लता मंगेशकर जी की आवाज में जीवन के दो राहे पे खड़े। यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है, पर अगर सूरज की पहली किरण के साथ जागा जाए तो वो सवेरा बाकी से बेहतर ही होता है।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी सुकून से, हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से, पर उस सुकून को पाने की तलाश में ही बेकार की दौड़ भाग किए जा रहे हैं। मिलता है अक्सर सुकून हमें हमारे भीतर ही, जिसे तलाशते हैं हम दुनिया की भीड़ भाड़ में। 5:40 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में कोरा कागज था ये मन मेरा। होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, वरना सुकून की नींद और ताजगी भरी सुबह किसे पसंद नहीं। 5:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि के तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का और 6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का। ठीक 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुन सकेंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट का समय रहेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे का समय रहेगा समाचार प्रभात का। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू में समाचार। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। नौ बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 9:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर आप सुनेंगे एक बार फिर से कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। पांच बजकर 59 मिनट हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में

0: शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapada area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Boda, Charan Bodo and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sarma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sarma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nobin, among others. The NDA, comprising the BJP, Ahom Gana Parishad, AGP and Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP-bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Mr. Sarma, who first became Chief Minister in 2021, is said to become the first non-Congress leader in Assam to serve 2 consecutive terms as CM. This will be the NDA's 3rd consecutive term in the state since the BJP-led alliance first came to power in 2016 under then-CM Sarbanand Sonowal. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Dumdum Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that Bose allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Dumdum Municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The officials noted that ED has traced direct proceeds of crime in the form of flats allegedly acquired by him in lieu of providing municipal jobs to various individuals. The probe agency have also identified substantial cash deposits in banks' accounts under his control. Mr. Bose will be produced before the special court today. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to the UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support. Massive life support, he added. During an event on maternal health care at the White House, Trump asked the participants to keep their remarks short as he had a meeting with a large group of generals on the issue of Iran. Trump received the Iranian proposal on Sunday amid hopes that it could lead to a breakthrough to end the war with Iran that began on February 28, blocking the key sea route for global oil supplies, leading to fuel shortages in several countries. In a social media post, Trump said that he has read the response from Iran's so-called representatives and he didn't like it, calling the response totally unacceptable. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

श्री हनुमान की भक्ति से हृदय में शक्ति का प्रकाश होता है। अंजनी सुत की भक्ति जीवन जीने का बल बख्शती है। जी हां, मंगल की प्रभात अर्पण में प्रथम वंदन श्री हनुमान का। मुक्ता के साथ आप हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुप्रभात।

श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने निश्चल मन से की गई भक्ति को सर्वोच्च माना है। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण और निरंतर ध्यान के मार्ग पर जो चल सके वो भक्त है। अपने मन को स्थिर कर सभी प्राणियों में जो ईश्वर को देखता है वो भक्ति करता है। केवल प्रार्थना नहीं बल्कि अपने सभी कर्म जो परमात्मा को अर्पित कर देता है वो भक्त है।

सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जिसके मन में शिव है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भक्त ये जानता है कि अंतर मन में परमात्मा बसे हैं। और फिर यही भाव, यही विचार शिव भक्त को निर्भय और शांत बना देते हैं।

भक्ति में है आनंद, और अगर आप भी बनना चाहते हैं इस आनंद के पात्र, तो सुनते रहिए अर्पण, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्टि साजना। जिस मनुष्य ने अपने अंदर से

दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और नफरत जैसे अवगुण मिटा दिए। फिर उसे ये सारी सृष्टि केवल अपनी मित्र लगती है, ईश्वर का रूप दिखाई देती है।

संत जनों के मन में होती सबके भले की कामना, संत सदा करते रहते हैं सबके लिए शुभ कामना। संत कभी ना आंसू देते, आंसू पोछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीर सभी की हरते हैं। आइए कोशिश करें कि हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह बन जाए। सर्वस्व के भले की कामना लिए, शुभ भाव लिए। अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। 6:44 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। 6:54 और 28 सेकंड हुए हैं। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुने।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामी एक वर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलो मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों

0: के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to United Arab Emirates, UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sharma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the 2nd consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and 3rd term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. The NDA, comprising the BJP, Ahom Gana Parishad, AGP, and the Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP-backed 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that the boss allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Domdom Municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The officials noted that ED has traced direct proceeds of crime in the form of flats allegedly acquired by him in lieu of providing municipal jobs to various individuals. The probe agency have also identified substantial cash deposits in bank accounts under his control. Mr. Bose will be produced before the special court today. U.S. President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on a massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.

प्रकृति से मुलाकात का ये खूबसूरत वक्त है। जी हाँ, ये सुबह का वक्त है, इसका सदुपयोग कीजिए। खुद को पहचानिए, परमात्मा के इस रूप को देखिए और भर लीजिए अपने आप को पूरी ताजगी के साथ। 7:21 और 38 सेकेंड, जुड़ी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात।

जी हाँ जनाब, हमारी आंखें बोलती हैं, और हमारी आंखें ही नहीं, हमारे हाव भाव, हमारी पर्सनालिटी सबसे पहले बता देती है हम कैसे हैं। तो फिर इस पर्सनालिटी को करना है ना खूबसूरत और इम्प्रेसिव, तो फिर अपने आप को रखिए तरोताजा, कीजिए योग और सेहत पर दीजिए ध्यान। अब जानते हैं, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले एक दो ग्लास गुनगुना या सामान्य पानी पी लेते हैं खाली पेट, तो आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो ये जब अंदर से अच्छी से सफाई होती है ना, तो वो चेहरे पर दिखाई दे जाती है। तो सुबह के वक्त सबसे पहले उठ के पानी पीने की आदत बनाइए और खूबसूरत खूबसूरत दिखते रहिए।

0: श्रोताओं, प्रकृति ने कभी उस इंसान के साथ छल नहीं किया जो उससे प्यार करता है। इसलिए प्रकृति को प्यार दें, इसके संसाधनों को संजोकर रखें, क्योंकि इन पर जितना हक हमारा है उतना ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भी है। इस सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे के आज के अंक की। मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। गुड मॉर्निंग प्रमोद।
1: गुड मॉर्निंग सर फिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring for you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 12th of May, 2026.
0: और काफी कुछ जैसा आपने बताया प्रमोद होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
1: That's right.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है।
1: That's right. Assam is set to witness a historic political event today with the swearing in of Himanta Biswa Sarma as the chief minister of the state for a second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post.

0: host for back-to-back terms. Dr. Sarma and his Council of Ministers will be administered the oath of office in secrecy by Governor Lakshman Prasad Acharya. We have a report.
1: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four Cabinet Ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
2: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी।
0: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to the UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links.
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति सरकार की सक्रियता दर्शाती है। उन्होंने रोकथाम, शुरुआती पहचान और सक्रिय देखभाल के साथ किफायती और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर बल दिया। श्री नड्डा ने प्रभावी पहल के लिए विज्ञान, नीति और कार्यान्वयन के समन्वय पर जोर दिया।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support. Massive life support, he added. During an event on maternal health care at the White House, Trump asked the participants to keep their remarks short as he had a meeting with a large group of generals on the issues of Iran.
2: और श्रोताओं, अब रुख कर रहे हैं खेलों का। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
0: Staying on with sports news, in Bangladesh, a three-member inquiry committee has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated the 10th of May, former Additional Secretary Dr. A.K.M. Oliullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibur Bashar and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days.

0: प्रमोद, हमने अपने श्रोताओं को देश दुनिया की तो खबर दे दी, अब वक्त है कि रुख कर लिया जाए अपने महानगरों की ओर।
1: Absolutely, and I'll start from the south.
0: बिल्कुल।
1: So I'll start with Chennai. The Atomic Energy Regulatory Board has approved the restart and continued operation of Unit 2 of the Tarapur Atomic Power Station on the 7th of this month, following the successful completion of a major refurbishment work undertaken under the Nuclear Power Corporation of India Limited. TAPS Unit 1 and 2, India's first nuclear power reactors, based on the boiling water reactor design, commenced commercial operation in 1969. The refurbishment included complete replacement of reactor coolant recirculation piping with forged piping and fittings made of advanced corrosion-resistant stainless steel. The other safety upgrades included commissioning of reactor containment filtered venting system, the alternate cooling water system, and other things. Further, during the ongoing outage, inspection of critical reactor components such as the reactor pressure vessel wells were carried out towards assessment of aging status and residual life assessment. The evaluations have shown that the reactor can continue safe operation with the normal maintenance and surveillance program. Sir Firozi, aap hume kahan le ja rahe hain?
0: Ye program Delhi se hi broadcast ho raha hai. Pramod, to sabse pehle baat karenge apni rajdhani ki.
1: Okay.
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री सोमनाथ की भव्य यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये विश्व को सनातन संस्कृति की अमर शक्ति और उसके पुनर्जागरण का संदेश देता है। और प्रमोद, मेरे पास एक और खबर है राजधानी दिल्ली से ही।
1: बिल्कुल।
0: दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी निर्माण और तोड़फोड़ यानी CND साइट्स पर लगभग 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सख्त नियम, तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। और प्रमोद, हमारा अगला महानगर कौन सा है?
1: बेंगलोर।
0: बिल्कुल।
1: जिसका नाम अभी बेंगलुरु हो गया है, राइट? अ स्पेशल पर्पस व्हीकल माय राइड फॉर्म्ड अंडर द के राइड टू इंप्लीमेंट द बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट BSRP हैज इश्यूड अ वर्क ऑर्डर टू द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई टू सप्लाई 153 एयर कंडीशनड ब्रॉड गेज मेट्रो टाइप कोचेस रिक्वायर्ड फॉर कॉरिडोर 2 and 4 ऑफ द सबर्बन रेल प्रोजेक्ट। सरफरोज जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, बिकॉज बैंगलोर में इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि ये जो सबर्बन,
0: हम मीम भी बहुत देखते रहते हैं कि मैं रील स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें अक्सर काफी जो है फनी सरकैज़म, बहुत मजाक एक तरह से उड़ाया जाता है बेंगलुरु के
1: ट्रैफिक का। इनफैक्ट मैंने एक रील देखा था, उसमें ये था कि दिस दी ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे अगर आप गूगल मैप्स लगाओ तो वॉकिंग विल बी फास्टर देन गोइंग बाय कार। So this is a very good initiative by the government. They're starting a suburban railway project to decongest Bangalore. So the coach factory in Chennai has to commence the supply of the coaches within the next 18 months, was told by PM Modi. This is in line with ensuring that the required train coaches are available by the time the track and systems infrastructure work for Corridor 2 and 4 are completed. During the Pragati review meeting held in December 2025, Prime Minister Modi had set this timeline for the suburban rail project to decongest Bengaluru.
0: और प्रमोद, उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है।
1: बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
0: और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अखिल भारतीय उद्योग संघ ने इक्वाडोर गणराज्य में भारत की राजदूत अनीता शुक्ला के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के उभरते अवसरों पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए सुश्री शुक्ला ने कहा कि इक्वाडोर खनन, पेट्रोकेमिकल्स, अवसंरचना, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, विमानन, फिनटेक और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष डॉ. विजय कलांत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और कृषि उत्पादों के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उपकरण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है, जबकि हरित ऊर्जा, कृषि तकनीक, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
1: Moving on to Hyderabad, Telangana Chief Electoral Officer CEO Sudarshan Reddy has directed district election officers and collectors to ensure that 90% of the special intensive revision SIR mapping is completed by the end of this month. During a video conferencing held from his Hyderabad office with DEOs and EROs, the CEO emphasized the need to accelerate the mapping process ahead of the upcoming special revision announcement by the Election Commission of India. He urged officials to involve residential associations and gated communities in the mapping process, suggesting that government employees and the public should voluntarily coordinate with booth-level officers, BLOs. To facilitate this, he requested the setup of help desks and the involvement of self-help groups and ration shop dealers.
0: और प्रमोद, अब रुक कर रहे हैं अपने आखिरी महानगर की ओर, कोलकाता की ओर। हमने हाल ही में देखा कितना, किस तरह का चुनावी घमासान हुआ पश्चिम बंगाल में, और अब वहां की नई राज्य सरकार ने सोमवार से अपना कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की और प्रशासनिक और कानून व्यवस्था संबंधी बैठकें की। मनोज अग्रवाल को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई तबादले भी किए गए हैं। एक अन्य घटनाक्रम में आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कई केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 45 दिनों के भीतर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में जारी किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। और प्रमोद, महानगरों की जानकारी के बाद अब जान लेते हैं महानगरों का मौसम भी।
1: जी।
0: सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। यहाँ बारिश के साथ आज तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और प्रमोद, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
1: जी, मैं शुरू करूंगा चेन्नई से। Is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius. The maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. The maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder and lightning. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
0: और प्रमोद, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और अपने श्रोताओं को बताने का कि आज यानी 12 मई का दिन क्यों अहम है।
1: That's right. Today we observe International Nurses Day. This day is celebrated every year on the 12th of May to honor nurses and their service to society. Sir Firozi, I think ये जो नर्स की जो प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है।
0: बिल्कुल।
1: है ना, किसी का ख्याल रखना।
0: और एक जो मैं चीज ऐड करना चाहूंगी प्रमोद, वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा करते हैं मरीजों की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक तय टाइम होता है। वो आते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं और चले जाते हैं। पर इफ यू सी नर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे उस मरीज जो रहता है उसकी डेडिकेटेड सर्विस में लगे रहते हैं।
1: एब्सोल्युटली। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना, ठीक है, पैसा मिलना अलग बात है, बट किसी का एक्चुअली केयर करना, बिकॉज मेरे पापा भी उसी स्टेट में थे 5-6 महीने, तो मैंने देखा था वो जो नर्सेस उनका ख्याल रख रहे थे, they were doing it with so much of love and affection.
0: और कोविड के दौरान जो हमने देखा, अपनी जान गवाकर उन्होंने दूसरों की जान बचाई।
1: एब्सोल्युटली। Nurses take care of patients with kindness, patience and dedication. They work day and night in hospitals and health centers to save lives and help people recover. As you rightly said, during difficult times like COVID-19 pandemic, nurses

0: served people with great courage and commitment. On this special day, we thank all nurses for their hard work and selfless service.
1: बिल्कुल प्रमोद, और अब जिक्र कर लेते हैं उन शख्सियत का जिनके नाम पर नर्सिंग डे मनाया जाता है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिंग डे. 1820 में इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ. इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है, और जैसा कि हमने कहा, इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है. इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायलों की सेवा की. 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी. हर साल भारत में उत्कृष्ट काम करने वाली नर्सों को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. और प्रमोद, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं. और मुझे लगता है ऑन पॉइंट जो है ये थीम रखी गई है.
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली.
1: और अब समय है कुछ और घटनाओं का जिक्र करने का जो आज ही के दिन घटित हुई.
0: जी,
1: राठौर वंश के शासक रहे राव जोध सिंह ने आज ही के दिन 1459 में गौरवशाली इतिहास समेटे राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की स्थापना की. इन्होंने पहले मेहराना किले की नींव रखी, फिर इस किले के आधार पर जोधपुर का नाम रखा गया. इससे पहले जोधपुर का नाम था मारवाड़. राव जोधा ने पहले अपनी राजधानी मंडोर को बनाया, बाद में इन्होंने राजधानी जोधपुर में स्थानांतरित कर दी.
0: That's right, मैं आपको करीब 90 साल और आगे ले जाऊंगा. 1551 The San Marcos University is established in Lima, Peru as the oldest continuously operating university in the Americas. And in 1846, the US Congress overwhelmingly approved a declaration of war against Mexico, starting the Mexican-American War.
1: और मैं आपको ले जा रही हूँ लगभग 200 साल पीछे. 1666 में आज ही के दिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे. इसके बाद की घटनाओं और उनके साहस ने मराठा साम्राज्य के इतिहास को नई दिशा दी. आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने के बाद राज बिहारी बोस आज ही के दिन सानुकी मारू जहाज से जापान के लिए रवाना हुए. इन्होंने विदेशी धरती से भारत की आजादी की अलख जगाई.
0: अगर मैं आपसे एक क्विज पूछूं छोटा सा, तो आप बता पाओगे?
1: चलिए आप पूछिए, देखते हैं.
0: द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके हिसाब से कब आया था?
1: I'm guessing around 1940.
0: Very good. 1941. Konrad Zuse presents the Z3, the world's first working computer in Berlin. And in 1926, explorer Raoul Amundsen and his crew aboard the airship Norge flew over the North Pole. This is recognized as the first undisputed verified aerial reaching the pole. In 1949, the Soviet Union officially lifted the 11-month blockade of West Berlin. The success of the Western Allies' Berlin airlift forced the reopening of land routes, marking a major de-escalation in the early Cold War.
1: और 1949 में ही विजयलक्ष्मी पंडित ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में भारत की राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला. वो अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत बनी.
0: In 1967, the first ever quadraphonic concert was held when Pink Floyd performed the Games for May concert in London. And in 2020, on this day, Prime Minister Narendra Modi gave a clarion call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. He said that a self-reliant India will stand on five pillars: economy, infrastructure, system, vibrant demography and demand.
1: और प्रमोद, हमने काफी घटनाओं का जिक्र किया जो आज ही के दिन घटित हुई और जिनकी वजह से आज का दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है. पर आज ही के दिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस दुनिया में आए या इस दुनिया से आज ही के दिन विदा हुए. अब उन लोगों का भी जिक्र कर लेते हैं.
0: That's right.
1: सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रगतिवाद की पहली पंक्ति के कवि शमशेर बहादुर सिंह को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को. ये हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के भी विद्वान थे. इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता शिल्प संरचना है, यानी जो शब्दों के माध्यम से चित्र रचना करती है. इसका कारण चित्रकला के प्रति उनका लगाव था. इनकी मुख्य कृतियों में कुछ कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी शामिल है. 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं के लिए इन्हें प्रतिष्ठित साहित्य

0: अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सहजता अगर इंसान का गुण है तो शमशेर बहादुर सिंह जीवन इसका उदाहरण है। ये किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं दिखाते थे प्रमोद, जैसा इनका जीवन रहा वैसा ही इन्होंने लेखन किया। और अब हम एक इनका कविता पाठ अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, जिससे जो ये वर्ड है, जो ये बयान है, ये और ज्यादा सच साबित होगा।
1: जैसे मेरी पसलियां खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं, जो मेरी आंखों का सूनापन है, ठंड भी एक मुस्कराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ।
2: That's right. 12th of May is also the death anniversary of famous American singer, actor and television personality Perry Como Vaz. In fact, he was known popularly as Perry Como. During a career spanning over more than half a century, he recorded exclusively for RCA Victor for 44 years from 1943 until 1987. And I want to tell a small story, Saifuri. When I was little, I lived in London. And lunch ke baad, mere papa ke favorite singer the. पेरी कोमो। तो लंच के बाद हमारे एक रिचुअल था कि पापा रिकॉर्ड लगाते थे एंड वी यूज्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग। तो मेरे जो बचपन का फर्स्ट सॉन्ग है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप काफी रिलेट कर पा रहे होंगे।
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।

जाने माने निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की आज जयंती है। इन्होंने राम राज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स और प्रकाश स्टूडियो की स्थापना की। विजय भट्ट को हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। इनकी फिल्मों में महान शास्त्रीय कलाकारों ने कई बार एक साथ अपनी गायकी या वादन का फन बिखेरा, जैसे बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खां और पंडित डी वी पलूस्कर ने आज गावत मनमोरा गीत गाया था।

0: दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत सर फिरोजी और वीसी प्रमोद को, कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: That's right, stay tuned for coming up next समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा

0: ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और

0: आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और

0: Asian age. New Delhi all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum called the Beatles at 3 Savile Row is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो, एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक्किदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान जर मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस, पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरून मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जर मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के 22 दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

0: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कारपुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मर्तबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ सरमा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती काउंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिगर कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला शिरकत करेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर का इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के ज़िम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज़ मौसूल हुई, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मजदूद हो गए हैं, जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को

0: इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताज़ा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज़ पर अपना जवाब भेजा, जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमद असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामे निगार से।
1: ईरान के मुतालबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियर रियायतों के बजाय जंग के हालात और इकतसादी सूरत हाल पर मबनी है, जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफ़ी दूरी है और मसालहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इकतसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिज़ाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अहम तंसीबात और तवानाई के मराकज़ पर हमलों के जवाब में बैनुल अक़वामी क़ानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे, जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी, जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमात गैर कानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के ताउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक्स पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में वाकई हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं, जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तई हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक 3 रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर AKM वलीउल्लाह और इस कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस

0: एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर ज़खीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि VVG रामजी एक्ट मुल्क भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़र मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनसिपल्टी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: जी हाँ, ये आकाशवाणी का ही जादू है जो यकीनन 90 सालों से आपके दिल को छू रहा है। तभी तो लगातार मिल रहा है आपका प्यार और हम भी कर रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। 8:47 और ठीक 35 सेकंड हुए हैं। आज मंगल की मुक्ता है आपके साथ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। आठ बजकर 52 मिनट और ठीक 30 सेकंड। जनाब, हर पल के साथ, हर दिन के साथ खुद को साबित करने का एक अलग ही प्रेशर होता है हम सब में। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन इस प्रेशर को वो छिपा कर रखते हैं अपने अंदर। और यही प्रेशर छिपता नहीं है, तनाव के रूप में आ जाता है हमारे सामने और फिर डालता है सीधा हमारी सेहत पर प्रभाव। इंटरव्यू देना है, माइक पर परफॉर्म करना है, या किसी से पहली बार मिलने जाना है, तो प्रेशर है ना। इसके लिए आप 4-4-4 यानी 4-4-4 ब्रीदिंग पैटर्न अपना कर देखिए। 4 सेकंड के लिए नाक से गहरी सांस लीजिए। अब 4 सेकंड के लिए ही उस ब्रेथ को रोक करके रखिए और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे उसे मुंह से रिलीज कर दीजिए। देखिएगा, आपका जो प्रेशर है, जो एंजाइटी है, जो तनाव है, उसको आप किस हद तक रिलीज कर पाएंगे। अगर इंटरव्यू से पहले एंजाइटी हो रही है या कहीं कुछ परफॉर्म करना है उससे पहले एंजाइटी हो रही है और ऐसे लगता है लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, हाँ चाय पी लें, कॉफी पी लें, बहुत आराम मिलने वाला है, ऐसा होता नहीं है जनाब। चाय कॉफी में कैफीन होता है जिससे एंजाइटी कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है, हल्का गुनगुना पानी, रिलैक्स फील करेंगे आप लेकर। आपको पता है स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे भाई? स्ट्रेस को जब डर से नहीं एक्साइटमेंट से देखा जाए और खुद को एक सफल लिंक की तरह देखा जाए, यानी ये कल्पना कि मैं सक्सेसफुल हूं, ये हम में विश्वास पैदा करती है। और फिर फर्स्ट मीटिंग क्या, इंटरव्यू डील क्या, या फिर माइक पर परफॉर्म करने का प्रेशर क्या, सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। पहली मुलाकात तो इनकी भी है, अब देखिए प्रेशर नहीं है, मुस्कुराहट है और यही म्यूजिकल दिल लगी है जो इनका तनाव कम करेगी।

सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, इसी उम्मीद के साथ इस दिन की कामना लेकर चलते हैं। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के बाद म्यूजिकल दिल्लगी के सफर को नाच पढ़ाएंगे आपके साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला एक पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया।

0: निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said, "There is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources."
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
2: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. This will be the second consecutive term for Mr. Sarma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nobin, among others. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Dumdum Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that Bose allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Dumdum Municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The Cannes Film Festival, the annual celebration of independent cinema on the French Riviera, will kick off today with John Travolta, Adam Driver and Barbara Streisand among the superstars set to walk the red carpet. Cannes is one of the world's biggest film festivals, first conceived in 1939 as an alternative to Venice's film extravaganza, which was then under the sway of the ruling fascists. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. Indian time. The Indian Met Department has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. And that is the end of this news bulletin.
3: UP Valley.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। जी हाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जहां मैं आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल की, जहां ढेर सारी बातों के बीच माहौल होगा एकदम म्यूजिकल, और जुड़े रहेंगे आप मेरे यानी नाज के साथ। और फिलहाल एंजॉय करेंगे प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग, फिर जल्दी से लौट कर आएंगे और करेंगे ढेर सारी टॉक आफ्टर दिस रॉक।

जो सह सकता है ये उसी को आजमाती है। ये जिंदगी बड़े अजीब तरीकों से हिम्मत रखना सिखाती है, आंखों को ख्वाब देती है, सवाल करो तो टेढ़े जवाब देती है। जो हर चीज को बेहतर कर देने में माहिर है ये उसी को वक्त खराब देती है। सब कुछ छीन लेती है बस एक पल में, और उम्मीद भर देती है जहन में। मजबूत बनाने को ये घाव कर देती है दिल में, और ये जिंदगी कभी कभी किसी के मुंह पर सच नहीं कहती। और बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें ये कुछ नहीं कहती, क्योंकि जो सह सकता है ये जिंदगी उसी को आजमाती है। अच्छा, बात ये भी शत प्रतिशत सही है कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें जो चाहे गाना भर लो और जब जी चाहे सुन लो। ये तो रेडियो की तरह है जनाब, कब कौन सा गाना बजेगा पता तो नहीं होता, लेकिन उसे आप एंजॉय जरूर करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें आपकी बेहतरी भी तो छुपी होती है। ऑल इंडिया रेडियो यानी आपका प्यारा आकाशवाणी इसी बेहतरी के साथ अपने 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है, जिसके गवाह और हम सफर बनकर आप सभी लिसनर्स ने जो प्यार हमें दिया है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन लेकिन लेकिन इन बीते सालों में कुछ भूले तो नहीं है आप? यही चेक करने के लिए मैं पूछने जा रही हूँ आपसे आज का सवाल, जिसके जवाब में आप बताएंगे कि भारत में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पर है। अरे बस बस इतना मत मुस्कुराइए, मुझे पता है कि आपको सवाल का जवाब पता है, तो नहीं करनी है देर, जवाब जल्दी से लिख भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर ईमेल के जरिए, या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे 9868686753 पर। चलिए आप करें ये काम, तब तक मैं सुनवा देती हूँ आपको ये अगला सलाम।

म्यूजिकल दिल्लगी का चल रहा है सफर, जहां मैं यानी के नाज हूं आपकी हम सफर। और अब बात होगी आज के दिन यानी 12 मई की, जिसे जाना जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में भी, क्योंकि आज ही के दिन साल 1820 में इटली में जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का, जिन्हें नर्सिंग की जननी यानी मदर ऑफ नर्सिंग के तौर पर याद किया जाता है। हर साल इस खास दिन को एक खास थीम के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत इस साल का नारा है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, आर नर्सेस आर फ्यूचर। और बात बिल्कुल सही है, बिना हमारे नर्सिंग स्टाफ की भागीदारी और मेहनत के हम किसी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिलहाल म्यूजिकल दिल्लगी में आगे नहीं बढ़ सकते बिना ये अगला गाना सुने। लौटेंगे तो दोहराऊंगी आज का सवाल और जानेंगे आज के दिन से जुड़ी कुछ और खास बातें भी।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

भाई पूछा तो मैंने कुछ देर पहले आपसे एक सवाल था जिसके जवाब आप में से कई लिसनर्स ने भेज भी दिए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है या फिर सवाल आप नहीं सुन पाए हैं उनके लिए एक रीटेक। आपको बताना है कि आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहां पर है। मुख्यालय माने मेन ऑफिस, सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कहां और कैसे भेजेंगे जवाब वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको याद दिलाते रहना। तो भाई fmgoldair@gmail.com पर करिए ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए 9868686753 पर। और एक खास बात बताऊं, सही जवाब भेजने वाले सभी लिसनर्स के नाम प्रोग्राम के एंड में मैं शामिल तो करूंगी ही, एक लकी लिसनर जिसने भेजा होगा बिल्कुल सही जवाब

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2000

2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आ गई हूँ वापस मैं यानी कि नाज और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। आज के दिन यानी 12 मई की हो रही है बातें, तो ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए कि आज के दिन को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ यानी अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी। जी हाँ, इस साल की ऑफिशियल थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा यानी प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, जिसके तहत जोर दिया जा रहा है जैव सुरक्षा पर, जो हमारी फसलों को हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2000 में आज ही के दिन भारत सरकार ने पारित किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसने नींव रखी डिजिटल भारत की। खास तौर पर साइबर क्राइम और ई कॉमर्स को कानूनी शक्ल इसी एक्ट के तहत मिली थी। और बातों का सिलसिला थमेगा नहीं, आगे भी रहेगा जारी, लेकिन अभी आ गई है माहौल को थोड़ा और म्यूजिकल करने की बारी।

वेलकम वंस अगेन, म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। और आई एम श्योर कि आप भूले तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाऊंगी आपको आज का सवाल जो मैंने आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में ही पूछा था, जिसके जवाब में आप लिख भेजेंगे उस जगह का नाम जहां है आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय। सही जवाब भेजने वाले सभी लिसनर्स के लूंगी मैं नाम प्रोग्राम के एंड में, और बीच में कभी भी आप में से कोई एक जुड़ेगा सीधा मेरे साथ फोन लाइन पर। बस गुजारिश है इतनी कि फोन को बिजी ना होने दें, और जब चल रही हो हमारी बात तो रेडियो से हो जाए थोड़ा दूर। फिलहाल एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मेरे पास। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में आपको बताना है जी, जिसके तहत पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके हुनर को नई पहचान दिलाने का काम बखूबी किया जा रहा है। 5 से 7 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग और फिर 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग इस योजना के तहत दी जाती है, और साथ ही ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी मिलता है। और इतना ही नहीं, 3 लाख तक का लोन सिर्फ 5% के इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाता है 2 चरणों में। पहचान के लिए पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड मिलता है। शर्तें बस इतनी सी हैं कि उम्र आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए, परिवार का केवल एक ही सदस्य इसका लाभ ले सकता है, और बीते 5 सालों में किसी भी तरह का सरकारी लोन आपने नहीं लिया होना चाहिए। और अब सुनिए।

और चलिए अब जान लेते हैं उन मशहूर हस्तियों के नाम जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई को हुआ था। भारतीय गुजराती भाषा के लेखक रमनलाल देसाई का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल था 1892। हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक विजय भट्ट का जन्म भी आज ही के दिन साल 1907 में हुआ था। और इंटरनेशनल चैंपियन बनने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू एम नाटेकर जी का भी जन्म

आज ही के दिन साल 1933 में हुआ था। इंडियन बैडमिंटन का सुपरस्टार इन्हें कहा जाता है और 15 सालों से भी लंबे अपने करियर में 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल खिताब इन्होंने अपने नाम किए थे। चलिए अब सुन लेते हैं अगला गाना, बहुत प्यारा है, आप भी सुनिए, मैं भी सुनती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे।

0: और अब चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का जवाब। तो जनाब, आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना था, और इसका जवाब है वही ऐतिहासिक भवन जहाँ के वर्ल्ड क्लास स्टूडियो में बैठने और आपसे बातें करने का सौभाग्य मुझे मिला है, आकाशवाणी भवन नई दिल्ली। आज के सवाल का सही जवाब, और किस किस ने दिया ये सही जवाब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने किया था वादा, एक लकी लिसनर जुड़ेगा हमारे साथ, तो वो है नवीन भाटिया जी मोती नगर नई दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सर।
1: नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग मैम
0: जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है, रोज आरजे इसको सुनते हैं आप एफएम गोल्ड पर, आज खुद को सुनकर कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। अपने रिश्ते के बारे में बताइए, सही जवाब दिया है आपने, कितने सालों से जुड़े हैं आकाशवाणी के साथ?
1: आकाशवाणी से तो बचपन से ही जुड़ा हूँ
0: जी,
1: तो 12-14 साल का था, लेकिन एफएम गोल्ड से 2005
0: जी। कैसे लगते हैं शोज, फेवरेट शो का नाम बताइए?
1: सुबह सुबह भी होते हैं, क्योंकि मैं सुबह शो ना सुन के ही निकलता हूँ काम पे।
0: अच्छा।
1: उसके बाद फिर 12 बजे घर आंगन हो गया, या 5 बजे वाले 5-10 वाले जो आते हैं।
0: अच्छा।
1: गाते गुनगुनाते।
0: म्यूजिकल दिल लगी नहीं अच्छा लगता?
1: हाँ, सुबह वाली सुबह सुबह 9-10 पे जो आता है।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि भाई, अब आपसे बात हुई है तो आपकी पसंद का गाना बजाना तो बनता ही है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: फिल्म दर्द का सुनवा सकते हो गीत?
0: जी बोल बताएं।
1: न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।
0: जी बिल्कुल।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे ये गाना, उससे पहले हम लेंगे उन बाकी लिसनर्स के नाम भी जिन्होंने भी आपकी तरह दिया आज के सवाल का सही जवाब। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जैसा था वादा, आप सभी के नाम करूंगी मैं शामिल। अंशु भार्गव सतीश घनाटे मुंबई से, और इसके बाद जयप्रकाश दुबे शिवाजी नगर भोपाल से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से, रामकृष्ण नवी मुंबई पनवेल से, तिलक राज अरोड़ा खुर्जा यूपी से, अनु बड़जात्या जी मुंबई से, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, शिप्रा शर्मा भगवान सूर्यवंशी हिंगोली महाराष्ट्र से, महावीर खत्री गुरुग्राम से, हेमंत साकर दांडे जबलपुर से, आशीष गायकर नई दिल्ली से, तिलक राज अरोड़ा नई दिल्ली से, पंकज मोहोट अमरावती महाराष्ट्र से, शिप्रा शर्मा दिल्ली से, सुनील तुप्तेवार नांदेड़ महाराष्ट्र से, गौरी शंकर नांगलोई से, और आखिर में गौतम देव जी का भी आ गया था मैसेज नोएडा से सही जवाब के साथ। और अब पूरा करती हूँ नवीन भाटिया जी से किया हुआ अपना वादा, सुनाती हूँ उनकी पसंद का गीत। लेकिन दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, अब से इस गीत के बाद आप सुनेंगे देश और दुनिया का हाल हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके बाद ठीक 10:30 पर मुझसे फिर मिलना है आपको दिल का मेल बॉक्स में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

की माझी जोड़ी जमली ग अशी छक्कास पोरगी पटली गोरी गोरी गोरी गोरी इश्काची नोट ही।

के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा

0: लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
2: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gona Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front.

बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1:10 58 सेकेंड और

इस वक्त कलाकार बेमिसाल। कलाकार बेमिसाल में लेखक, गीतकार, नाटककार, पार्श्व गायक और अभिनेता स्वानंद किरकिरे, हिंदी सिनेमा के साथ ही दूरदर्शन सीरियल्स के कहानीकार, सहायक निदेशक और संवाद लेखक स्वानंद किरकिरे, फिल्म जगत की अनेक विधाओं में संपूर्ण स्वानंद किरकिरे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वानंद किरकिरे से जुड़ी और उनकी लेखनी से जुड़ी उनके फिल्मी करियर की बातें साझा होंगी आज कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर। और सबसे पहले उनकी कलम से निकली एक छोटी सी रचना, आप सबके नाम कवि कौन है, भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं, कवि रक्त को ऊर्जावान बनाते हैं, कवि समुदायों को देश बनाते हैं, कवि देशों को महान बनाते हैं, कविता सुन जवान सीमाओं पर लड़ते हैं, कवि कुर्बानियों के महाकाव्य गढ़ते हैं, गीता बाइबल कुरान लिख जाते हैं, कवि अपनी समझ से इंसान बनाते हैं, कवि मोहब्बत की जुबान बन पाते हैं, कवि कामना का पैगाम बन जाते हैं, कवि गीतों के प्राण बन जाते हैं, भावनाओं को चार चांद लगाते हैं, कवि भाषा को सम्मान दिलाते हैं, कवि निर्बल के अस्त्र बन जाते हैं, कवि क्रांति के शस्त्र बनाते हैं, कवि साबुन तेलों की दुकान चलाते हैं, भगवान कवि को बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं। जी हाँ, इसी तरह की और भी रचनाएं बीच बीच में आपके नाम होती रहेंगी। स्वानंद किरकिरे जी की कलम से निकली और उनकी जो लेखनी का जादू है ना, वो भी हम सब के सिर चढ़कर बोलेगा आज इस सफर पर। तो फिर कलाकार बेमिसाल का ये सफर, और सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत परिणता फिल्म से, उन्हीं की कलम का जादू यहाँ पर भी दिखेगा। और क्या करना है आपको, सुनते रहना है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। परिणीता फिल्म का ये गीत बहुत ही मधुर सा गीत है, शांतनु मोइत्रा का संगीत है और गीतकार स्वानंद किरकिरे।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

जाने माने गीतकार, गायक, लेखक स्वानंद किरकिरे, जिनका इस वक्त जिक्र हो रहा है, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आप ज्वाइन इन हैं, जिनकी लेखनी के जादू ने सुनने वालों को हमेशा सराबोर किया। उनकी गायकी, उनका लेखन सभी कुछ लाजवाब रहा। स्वानंद किरकिरे, जन्म इनका हुआ इंदौर में एक मराठी भाषी परिवार में, माता नीलांबरी और पिता चिंतामणि। माता पिता दोनों ही संगीत में पारंगत रहे, दोनों ही शास्त्रीय संगीत के अच्छे ज्ञाता रहे। बस माता पिता से ही इन्होंने संगीत की जितनी भी शिक्षा ली थी उन्होंने अपने माता पिता से ही ली थी। गायन का कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त नहीं किया था और शिक्षा में ग्रेजुएशन होने के बाद वाणिज्य से इन्होंने स्नातक रहे और उसके बाद दिल्ली चले आए। 1996 में इन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक किया और थिएटर करना शुरू कर दिया। और जब इनकी लेखनी का जादू, मतलब जब इनके शब्द कविता के रूप में आए और वो किताबों में छपने लगे, तो उन्होंने अपने बचपन को कुछ यूं बयां किया। रे मीता, एक काल्पनिक सा नाम लिया, रे मीता, चल भागे चल दौड़े, एक गली न छोड़े, कच्ची अमिया तोड़े, चाहे रोके लोग निगोड़े, रे मीता गम की बहा मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े, रे मीता मैं बंदर तू भालू, शलजम कचालू, चल घुटने लहू सना ले, चल गिर गिर जख्म लगा ले, रे मीता बचपन फुंसी फोड़े।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर आज बात करें जाने माने नाटककार, गीतकार, लेखक, अभिनेता, पार्श्व गायक स्वानंद किरकिरे साहब की, और जिनके गीत अभी आपने उन्हीं की आवाज में सुना। एक तो ये जो टॉक शो का गीत था उड़ी चिरैया, जिसने कि पूरे देश का, जैसे जहां जहां इसे सुना गया होगा ना, सबकी आंखें नम हो आई थी इस गीत को सुनकर। इस जैसे बोलते हैं कि दिल को छूने वाले शब्दों का जो एक ताना बाना था, उनकी कलम से रचा गया था, बुना गया था, सजाया गया था। और उससे पहले मसान फिल्म का जो गीत आपने सुना, तो किसी रेल सी, ये उन्हीं की आवाज में था, स्वानंद किरकिरे जी की। और परिणीता फिल्म का गीत भी हो बोले से जुड़ी एक स्टोरी के बारे में उन्होंने एक बार एक मंच पर साझा किया कि वो बताते हैं कि हजार ख्वाहिशें का गीत, जिसका गीत अभी आपको मैं सुनवाऊंगी, बावरा मन, इस फिल्म का जब गीत उन्होंने जो लिखा था उसे सुनकर प्रदीप सरकार उन्हें विधु विनोद चोपड़ा जी से मिलवाने के लिए ले गए। कुछ बातें हुई और उस वक्त ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि उन्हें विधु जी के लिए कुछ गीत लिखने हैं। इस बीच वो अपने होम टाउन इंदौर चले गए और एक दिन अचानक से उन्हें फोन

आया और मिलने के लिए बुलाया गया। स्वानंद जी ने पाया कि कुछ म्यूजिक धुनें उन्हें सुनवाई गई थी जिस पर कि उन्हें गीत लिखना था, और म्यूजिक सुनकर म्यूजिक की धुनों पर गीत लिखना ये उनके लिए पहला अनुभव था। इससे पहले बस वो पहले कलम चलाते थे, उसके बाद म्यूजिक कंपोजर उसकी धुनें बनाते थे, लेकिन अब की बार कुछ उल्टा हुआ कि म्यूजिक धुनें पहले सुनी गई और उन पर उन्हें गीत लिखना था। तो पहले तो उनका मन नहीं बना और वो चाह रहे थे कि इसके लिए मना कर दें, लेकिन किसी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो लिख देता हूँ, देखा जाएगा, अगर गीत नहीं पसंद आएगा तो गाना खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। बस यही उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उनके कलम से जो कुछ गढ़ा गया ना वो एक इतिहास बन गया। और ये गीत तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन उनकी जो बोलते हैं ना लिखनी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली हैं। उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं कविता के तौर पर और उस किताब को नाम दिया है आप कमाई। तो एक बार उनसे पूछा गया कि भाई इस काम ये जो नाम है इसके पीछे क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे बाप कमाई होती है ना इसी तरह से ये उन्होंने आप कमाई मतलब कि पहली बार ये उनकी कमाई से लिखा गया या उनकी कमाई के लिए ये पहला जरिया बना कविता लिखना। तो एक और भी बेहतरीन सी प्यारी सी कविता अगर आप इजाज़त दें, मुझे लगता है कि आप भी मतलब ये किताब उनके जरूर पढ़िएगा, बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं इसमें घड़ी गई हैं उनकी कलम से। मैं एक गीत लिख रहा हूं और इसका जो टाइटल है आत्मकथन ये जो टाइटल है इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं गीत लिख रहा होता हूं जब बन रहा होता हूं, बिगड़ रहा होता हूं, बस रहा होता हूं, उजड़ रहा होता हूं, कितना कितना हंसता हूं, कितना कितना रोता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि उनकी कलम से कितनी बेहतरीन चीज़ें मतलब जैसे जादुई असर करने वाले शब्द निकलते थे, बहुत ही सरल होते थे और समझ में आते थे, लेकिन उनका असर बहुत गहराई तक जाता था। जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ, झूठे किस्से कई मन से घड़ लिए, झूठे किस्से कई मन से गढ़ लिए, सूखी ऋतुएं कई पतझड़ सी लिए, गीली लकड़ी सा मैं सड़ रहा होता हूँ, बेतों की बात पर दिन पर या रात पर भर दोपहरी में अड़ रहा होता हूँ, लफ्ज बुनता हुआ ख्याल चुनता हुआ, अनजानी सी राह पर बढ़ रहा होता हूँ, बन रहा हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ जब मैं लिख रहा होता हूँ। तो चलिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी उनकी कलम से निकला एक और बहुत ही बेहतरीन संगीत उन्हीं की आवाज़ में।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं कलीम अहमद। जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मंसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। डॉक्टर सरमा के साथ 4 अरकान असम्बली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी उजरा और एनडीए की सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर सरमा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए इस रियासत में लगातार तीसरी बार इक्तदार में आया है। उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असेंबली में 102 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद AGP और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF को 10-10 सीटें हासिल हुई थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिद अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज़ नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वजीर आजम रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक के चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत

मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि यह फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निज़ाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है ताकि पेपर लीक के इल्ज़ाम की भरपूर तरीके से जाँच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो सीबीआई को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। एनटीए ने कहा कि यह इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में सीबीआई ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान सीबीआई की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहां पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नौमुंतखब वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी के ज़ेर सदारत पहली काबीना मीटिंग के फ़ैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी, जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफ़्ज़ान सेहत को यकीनी बना। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को उड़ीसा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे, जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि बीजेपी को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर बीजेपी को मज़ीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। ये अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और रज़ाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों मददगार और नर्स मिडवाइव्स और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट के एक सर्टिफिकेट, 1,00,000 रुपये नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के जरिए फराहम की गई बेशबहा खिदमात के तहत कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के वज़राए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैनुल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। यह दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इकतसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नज़दीक वाक़े शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि इस कॉरपोरेशन के तहत शराब की 4,675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं।
आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच

भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मनसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा

0: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जाँच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मध्यम लहरी 537.6 मीटर 558 किलोहर्ट्स वर श्रोते हो। आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी तसंच AIR मराठी ही DTH उपग्रह वाहिनी। आमचे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर देखील आपण ऐकू शकता। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत आणि आता प्रसारित करीत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। नादब्रह्म अंतर्गत आता ऐकूया कल्याणी जोगळेकर यांचं गायन राग मुलतानी। विलंबित रचना 1 तालात निबद्ध आहे तर द्रुत रचना अर्धा 3 तालात निबद्ध आहे। विलंबित रचनेचे बोल आहे गोकुळ गाव के छोरे आणि द्रुत बंदिशीचे बोल आहे मनात नाही मानत नाही जियारा। यांना तबला साथ केली आहे प्रसून चॅटर्जी यांनी तर हार्मोनियमची साथ आहे सुधांशु घारपुरे यांची। ऐकूया कल्याणी जोगळेकर यांनी गायलेला राग मुलतानी।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जो गीत गुर्जरी अने आजे आपनी साथे छे तरुलता करोडिया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोडिया ना सस नहीं नमस्कार।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों आज छे इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। हाँ मित्रों प्लांट हेल्थ डे तमे बराबर सांभळ्यो छे। मित्रों छोड़ अने वृक्षों आपणने पशुपक्षीओं ने जीवजंतुओं ने खोराक आपे शुद्ध हवा आपे ऑक्सिजन आपे अने आमाना केटलाक छोड़ो तो औषधीय गुणों धरावता होय एटले आपणने औषधि रूप पण काम आवता होय छे। आपणे अनेक छोड़ के वृक्षों ने वावता होईए परंतु त्यार बाद एनी वृद्धि बराबर थाय छे के नहीं एने पोषण बराबर मळे छे के नहीं एनी काळजी लेवानुं कदाच आपणे चूकी जता होईए छे। आ छोड़ के झाड़ने पूरता प्रमाण में खातर मळी रहे पाणी मळी रहे अने पूरतो सूर्यप्रकाश मळे तो एनी वृद्धि थाय अने ए छोड़नुं आरोग्य सारूं रहे एनी जागृति माटे आजनो आ दिवस उजवातो होय छे।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आप सामने राजो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी कार्यक्रम मा आजे आपनी साथे छे तरुलता करोडिया। तो मित्रों, आजे छे 12 मे र व देसाई नी जन्म जयंती। 12 मे 1892 ना रोज एमनो जन्म थयो हतो। एमनो उपनाम हतो योग मूर्ति वार्ताकार। एमणे अनेक नवलकथाओ लखी, जेमां दिव्य चक्षु अने भारेलो अग्नि एनो पठन आपणे आकाशवाणी मुंबईमां थयुं हतुं। ए उपरांत एमनी पूर्णिमा, झंझावा जेवी अनेक नवलकथाओ छे। एमणे अनेक नवलिकाओ लखी, एकांकी लखी, संयुक्ता जेवा नाटकों लख्या, इतिहास प्रदान कृतिओ लखी। ए उपरांत एमनुं जे साहित्यमां प्रदान छे ए खूब बहोळुं छे। एमणे विवेचन पण कर्या छे, एटलुं ज नहीं एमणे पात्र परिचय आपनार एवी पण कृतिओ करी छे, जेम के पृथ्वीराज चौहान। एमना अनेक काव्य संग्रहो पण बहार पड्या छे। तो मित्रों, आपना माटे प्रश्न छे के र व देसाईनो आजे जन्मदिवस छे, तो र व देसाईनो पूरुं नाम शुं छे ए आपे मने जणावानुं छे। नंबर छे 02245154134, 02245154135। ए सिवाय मित्रों, बीजा बे प्रश्नों पण हुं तमने अत्यारे ज करी लो। महाराष्ट्र अने गुजरातनी बॉर्डर पर एक एवो रेलवे स्टेशन छे जे महाराष्ट्रमां पण आवे छे अने गुजरातमां पण आवे छे। आ रेलवे स्टेशन क्यूँ, एनुं नाम शुं छे ए आपे मने जणावानुं छे। ए उपरांत एक सरोवर एवुं छे भारतनी अंदर जेनो एक तृतीयांश भाग भारतमां छे अने बे तृतीयांश भाग चीनमां छे, तो आ सरोवर क्यूँ, आ झील कई, ए आपे मने जणावानुं छे। नंबर छे 02245154134, 02245154135। सवाल फरी एक वार, र व देसाईनुं पूरुं नाम। बीजो सवाल के महाराष्ट्र अने गुजरातनी बॉर्डर पर आवनारू ए रेलवे स्टेशन जे अर्धो महाराष्ट्रमां छे अने अर्धो गुजरातमां छे, अने एक एवो सरोवर भारतनी अंदर जेनो एक तृतीयांश भाग भारतमां छे तो बे तृतीयांश भाग चीनमां छे, तो ए सरोवर क्यूँ, आपे मने आ प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी। गीत गुर्जरी में श्रोता मित्रों फोन अधवच्चे कापवो पड़े छे, कारण के गीत पूरू थाय एटले अमारे ऑनएर आवुं ज पड़े, एटले माफ करजो भावना बेन के तमारो फोन आ रीते कापवो पड़ो। तो मित्रों हाल में नवा स्टार्टअप करवानी फेशन है। अपना प्रधानमंत्री श्री, अपना वडाप्रधान श्रीए कहू के नवा नवा स्टार्टअप शुरू करो। तो कोचीना एक भाईए रेंट अ ट्री नामनु स्टार्टअप शुरू कर्यु। रेंट अ ट्री एटले के झाड़ भाड़े मळे छे। हवे झाड़ भाड़े कई रीते मळे? तो आ कोचीना जे भाई छे ए केरीनी सीजन में मात्र एमनी लगभग 250 एकर जमीन पर आंबाना झाड़ो वावेला छे। अने महाराष्ट्र में रत्नागिरी में आ झाड़ो छे, तमिलनाडु ना दांडीगुलू में आ झाड़ो छे, प्लस केरल ना पल्लक्कड़ में एमना आ वृक्षों आवेला छे। हवे रेंट अ ट्री एटले तमारे झाड़ भाड़े थी लेवानुं। केरीनी सीजन आवे ए पहला तमारे ए झाड़ बुक करावुं पड़े। तमे झाड़ बुक करावी दीधुं पछी तमने वीडियो थी केवी रीते एना पर फळो आवी रह्या छे, केटला फळो आवी रह्या छे एना वीडियो अपलोड थता जाय। अने ज्यारे आंबा पाके केरी आवे त्यारे ए केरी तमारा घर सुधी पहोंचाडवामां आवे छे। आ छे एमनो नवो आइडिया अने नवो स्टार्टअप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। इससे ये कार्यालय

0: स्थानीय मांग का विश्लेषण करने, प्रदर्शन की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर त्वरित डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का डिजिटल प्रयास एक मजबूत सुरक्षित संरचना सुनिश्चित कर रहा है, साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और विश्वसनीय, लचीली तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम बना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी का स्वीडन और चौथे चरण में नॉर्वे जाने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that this decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following the inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centres selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, 4 MLAs was also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Aham Gan Parishad and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sharma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. The National Democratic Alliance, or NDA, returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. Apart from Justice Kumar, the committee will comprise

0: राम, मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: मैं हूं आपके साथ अपराजिता, आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म से ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अगला जो गाना है वो है फिल्म नाखुदा से लता जी और नितिन मुकेश की आवाज में।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Engineering Department, Union Territory of Chandigarh has invited applications to fill 3 posts of Executive Engineer Civil on deputation basis, including 2 vacant and 2 anticipated vacancies. The posts are in Group A category in Level 11. The deputation will initially be for 1 year and may be extended up to 3 years. Eligible officers from central or state governments, public sector undertakings, semi-government or autonomous or statutory organizations can apply through proper channel. Detailed eligibility conditions, recruitment rules and the list of required documents available on Chandigarh Administration website. You may visit www.chandigarh.gov.in within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. And the last date for submission is 9th June 2026. National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal, a deemed to be university under the Ministry of Education, Government of India, has announced a recruitment for several teaching and non-teaching positions. The positions are professors, associate professors, scriptwriter, production manager, junior stenographer, hostel caretaker, AC technician, and multi-skill attendant. The teaching vacancies are available in departments such as computer science and engineering, civil engineering, mechanical engineering, management, education technology, mathematics, electronics, and liberal arts. Pay scales range from level 14 for professors to lower levels for non-teaching staff as per the 7th CPC. Interested candidates can submit their online applications within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website that is at www.nittrbpl.ac.in. I repeat the website, it is www.nittrbpl.ac.in. Warehousing Development and Regulatory Authority, WDRA, under the Government of India, has invited applications for engagement of 1 junior consultant law on contractual basis. Retired officials from central or state governments and public sector undertakings are eligible to apply for the position. Candidates should also possess proficiency in computer operations and typing work, detailed eligibility conditions, terms and conditions, and the prescribed application format is available on the official website. Interested candidates may submit their applications in the prescribed format within 30 days from the date of publication in the Employment News. For details, kindly refer to the website that is at www.wdra.gov.in. National Capital Region Transport Corporation Limited, NCRTC, a joint venture of the Government of India and participating state governments, has invited application for senior positions in track discipline. The vacancies include 1 post of Senior Deputy General Manager Track and 2 posts of Deputy General Manager Track on direct recruitment. Candidates applying should possess a full-time BE BTech degree in civil engineering, while a postgraduate qualification in construction management will be preferred. Applicants should also have substantial post-qualification experience in government organizations, PSUs, autonomous bodies, or the private sector. The maximum age limit for both posts is 45 years. Interested candidates can check the detailed eligibility on the website. And the website is www.ncrtc.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. अलीयावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन सभी पदों के लिए एक एक पद की रिक्ति उपलब्ध है। पद हैं रीडर, वाक रोग विशेषज्ञ समूह ए, पुनर्वास अधिकारी समूह ए, व्याख्याता शिक्षा समूह ए, व्याख्याता श्रवण वाक रोग विज्ञान समूह ए, व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी, लेखाकार समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समाज कार्य समूह बी, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी, तकनीकी सहायक ऑडियो विजुअल समूह बी, मनोवैज्ञानिक समूह बी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार समूह बी और डेटा एंट्री ऑपरेटर समूह बी। इनमें व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी के दो दो पद उपलब्ध हैं। अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.gowr.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है जिसका पता है www.cwc.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में इन पदों की कुल 83 उपलब्धियां मौजूद हैं और इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियां विभाग के अनुसार तय की जाएंगी। विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा एवं सर्जरी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र, विभागवार सीटों की संख्या, आरक्षण नियमों और शर्तों आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों के बारे में कोई भी नई सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आप एक बार फिर वेबसाइट का पता नोट कर सकते हैं www.aimsgorakhpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल की देंगे आपको जानकारी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन सेगमेंट में बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण पेशे की जो मानवीय संवेदना के बहुत ही क्रूशियल जिसे कहें पहलू से जुड़ा हुआ है। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है, इस पर हम बात करेंगे। और आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कवियों के कवि, कवि शमशेर सिंह बहादुर को। तो शुरुआत में उनकी जो कविता है, जो सत्य को अभिव्यक्त होने के लिए किसी बाहरी सहारे या गवाह की आवश्यकता नहीं होती है ऐसा कहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सत्य है वो स्वयं प्रकट होता है। वो बोलते हैं अपनी कविता बात बोलेगी में, हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ ही आंखें क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है। उनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आज के इस अंक में। मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जागृति। जागृति, यू मस्ट हैव हर्ड, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द ऑनेस्ट अपील बाय आवर प्राइम मिनिस्टर सिंस लास्ट टू डेज। यस, आवर प्राइम मिनिस्टर हैज earnestly appealed for national discipline and nation first initiatives, calling on Indians to adopt responsible self-reliant habits to strengthen our country against global economic disruptions. The 7-point appeal calls for reducing fuel consumption, increasing use of public transport, and curbing non-essential gold purchases and foreign travel. The appeal highlights that a significant portion of India's foreign exchange is spent on imports like crude oil, gold, edible oil and fertilizers. And these restraints will foster a culture of collective responsibility rather than panic. So we shouldn't be panicking on these appeals. And of course, it's urging, he has been urging all the individuals to contribute to national resilience, similar to the efforts seen during the pandemic. Well, we must all take it seriously and try to follow it as economic patriotism rather than anything else. And shall we begin with our headlines now, Jagriti?
0: बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश।
1: Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term.
0: CBI ने

0: ब्लेजर्स हैदराबाद से।
1: And as always, Jagriti, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about, as you mentioned in the beginning, International Nurses Day.
0: Ji.
1: Today we are celebrating one of the most compassionate and dedicated professions in the world, that is nursing. Today, the 12th of May, World observes International Nurses Day, commemorating the birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of modern nursing, whose service and vision changed healthcare forever. And this year's theme is Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Lives. The theme highlights the urgent need to support nurses with better safety, respect, training, and resources, because empowered nurses create healthier societies.
0: दोस्तों, हर अस्पताल में आधुनिक मशीनें होती हैं, हर डॉक्टर के पास मेडिकल का ज्ञान होता है, लेकिन अस्पतालों में जो चीज़ सचमुच मरीजों को ठीक करती है वो होती है मानवीय देखभाल, और ये देखभाल अक्सर करती हैं नर्सेज। मुश्किल पलों में मरीज का हाथ थामने से लेकर लंबी रातों तक बिना थके काम करने तक नर्सें दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की धड़कन हैं। वो कमजोरों को दिलासा देती हैं, परिवारों का सहारा बनती हैं, डॉक्टर्स की मदद करती हैं और इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई करती हैं और संकट के समय मजबूती से खड़ी रहती हैं। आज के कार्यक्रम का ये हिस्सा उन खामोश नायकों को समर्पित है जिन्होंने दूसरों की देखभाल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है।
1: International Nurses Day is celebrated on the birth anniversary of Florence Nightingale, lovingly remembered as the lady with the lamp. Born in 1820, Florence Nightingale transformed nursing into a respected profession. During the Crimean War, she cared for wounded soldiers under extremely difficult conditions. At night, she would walk through hospital corridors carrying a lamp, checking on injured soldiers and comforting them.
0: फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समर्पण ने दुनिया भर में आधुनिक नर्सिंग आंदोलन को प्रेरित किया। उनका मानना था कि करुणा, स्वच्छता, अनुशासन और मरीजों की देखभाल से उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। उनके विचार आज भी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को दिशा दिखाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि केवल एक व्यक्ति की दयालुता और दृढ़ संकल्प भी दुनिया को बदल सकता है।
1: Yes, Jagriti, just imagine a hospital without nurses. Who would monitor patients day and night? Who would provide emotional support to frightened families? Who would administer medicines, assist in surgeries, and respond instantly during emergencies? These are the nurses who ensure that healthcare functions smoothly every single minute, isn't it?
0: बिल्कुल, और ये अनुभव हम सब ने, आपने, मैंने या जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने ज़रूर किया होगा कि जब हम अस्पताल में होते हैं इंसान वैसे ही टूटा हुआ होता है, तो तमाम जो मेडिकल प्रोसेस होती हैं उनमें जो समय जाता है, जो तकलीफ़ होती है उनमें वाकई दिलासा देती हैं। जो नर्सेज होती हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो देखती हैं, उसके अलावा कंसोल भी करती हैं, और ये बड़ी चीज़ हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों की सराहना करते हुए उन्हें देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया, और सचमुच उनका योगदान अस्पतालों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
1: And President Draupadi Murmu also today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function which was held in Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing, and these prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. Each award includes a certificate of merit, a cash prize of 1 lakh rupees and a medal symbolizing the nation's gratitude for the invaluable service rendered by these health warriors.
0: जी, और अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मी सेवा के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं की कर्तव्य के प्रति उनकी प्रेरणादायक निष्ठा और रोगियों की देखभाल के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना भी की।
1: rightly so. Jagriti, in regard to their profession, now let us take a moment to see what all services nurses extend. These are rural health centers. They also serve us in urban hospitals, in schools and colleges, ambulance services, military healthcare units, in community outreach programs, in old age homes, and also in disaster relief camps. They work in every corner of society where care is needed.
0: बिल्कुल. और कभी कभी जो ज़रूरत होती है एक इंसान को, वो दवाओं से पूरी नहीं होती है, दवाओं से वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है जितना कि किसी का जो व्यवहार उसके प्रति है उससे वो ठीक हो जाता है. और जो नर्सेज हैं वो अक्सर यही करती हैं. वो परेशान मरीजों के लिए हिम्मत का सहारा बनती हैं, चिंतित परिवारों की बात सुनने वाली बनती हैं, और ठीक होने के सफ़र में एक मार्गदर्शक बनती हैं, और कभी कभी अकेले जो पल हैं उनमें एक दोस्त भी बन जाती हैं.
1: एंड मेनी पेशेंट्स रिमेंबर द स्माइल ऑफ अ नर्स लॉन्ग आफ्टर दे रिकवर. अ रीअश्योरिंग वॉइस सेइंग यू विल बी ऑल राइट कैन गिव स्ट्रेंथ टू समवन बैटलिंग इलनेस. नर्सिंग इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन, इट इज अ कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी. फ्रेंड्स, द COVID-19 पैंडेमिक शोड द वर्ल्ड द एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स. व्हाइल सिटीज फेल साइलेंट एंड पीपल स्टेड इनडोर्स, nurses stepped forward fearlessly. They worked long hours in protective equipment, stayed away from families and risked their own health to save others. It's not an easy job.
0: बिल्कुल. और कई नर्सों ने उन मरीजों को सांत्वना दी है जो अपने प्रियजनों से मिल नहीं पा रहे थे. वो हजारों लोगों के लिए देखभाल करने वाले भावनात्मक संबल और जीवन रेखा बन गईं. उनके समर्पण ने दुनिया को ये याद दिलाया कि नायक हमेशा कैप नहीं पहनते, कभी कभी वो मास्क, दस्ताने और यूनिफॉर्म भी पहनते हैं.
1: एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर्स थीम, इट फोकसेस ऑन एम्पावरमेंट. बट व्हाट डज एम्पावरिंग नर्सेज रियली मीन? इट मीन्स प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस, इंश्योरिंग फेयर सैलरीज टू देम, ऑफरिंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट, प्रोवाइडिंग एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग, रिस्पेक्टिंग देयर एक्सपर्टीज, एंड of course reducing workplace stress and burnout as well.
0: बिल्कुल. और जब नर्सों को सहयोग मिलता है तो मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है, समुदाय और भी स्वस्थ बनते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां और कहीं मजबूत होती हैं. कई देशों में नर्सें इन विषयों पर जागरूकता अभियान का नेतृत्व भी करती हैं, जिनमें शामिल हैं टीकाकरण, पोषण, मातृ देखभाल, बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम. और उनकी भूमिका न केवल उपचार में बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भी बेहद महत्वपूर्ण है.
1: एंड वी कैन से एवरी नर्स कैरीज countless stories in their hearts, stories of newborn babies taking their first breath, stories of patients recovering after difficult surgeries, stories of elderly people receiving comfort and dignity, stories of hope returning where fear once existed. Many nurses work night shifts while their own families wait at home. Many skip meals during emergencies. Many continue smiling despite exhaustion because they know someone depends on them. Their service often goes unnoticed, but its impact is immeasurable.
0: बिल्कुल. और आज हमारे साथ जुड़ने वाले युवा श्रोताओं के लिए खासकर ये बताएं कि नर्सिंग दुनिया के सबसे नेक पेशों में से एक है. ये विज्ञान को करुणा के साथ, ज्ञान को सेवा के साथ और कौशल को मानवता के साथ जोड़ता है. एक नर्स केवल बीमारी का इलाज ही नहीं करती बल्कि वो लोगों में उम्मीद भी जगाती है. यदि आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सपना देखते हैं तो नर्सिंग आपको पूरे मान सम्मान और गर्व के साथ समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है.
1: So today on World Nurses Day, let us express our gratitude to every nurse working in crowded hospitals, serving in remote villages, caring for patients in emergencies, supporting mothers and children, helping the elderly and saving lives every day.
0: बिल्कुल. आपकी करुणा शक्ति प्रदान करती है, आपका समर्पण विश्वास जगाता है, आपकी सेवा मानवता की रक्षा करती है. आप स्वास्थ्य के रक्षक और आशा के सच्चे स्तंभ हैं. जब हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना रहे हैं तो आइए ये याद रखें कि स्वास्थ्य सेवा तब सबसे अधिक सशक्त होती है जब नर्सों का सम्मान किया जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें सशक्त बनाया जाता है.
1: So let us value the hands that heal, the hearts that care and the voices that comfort, because truly Our nurses, our future, empowered nurses save lives. To all nurses listening today, we thank you from the bottom of our hearts for your selfless service and unwavering dedication. With this heartfelt tribute, we

0: conclude our special program on International Nurses Day. Stay healthy, stay compassionate, and continue appreciating the heroes among us.
1: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि कुछ क्या खास है उनके पास.
0: And let's go to Kozhikode. Akashvani is celebrating its 90th anniversary on the 8th of June this year. In this connection with their nationwide celebrations, Akashvani Kozhikode, which is completing 75 glorious years of service on 14th of May 2026, has organized a mini literary festival titled Legacy 2026.
2: The three-day literary fest began at the station studio with the participation of eminent personalities from the fields of literature, poetry, cinema and music. Well-known writer, poet and orator Professor Kalpetta Narayanan inaugurated the festival. Speaking on the occasion, he said that the bliss of human life lies in the age of audibility and listening. He described radio as the greatest medium of the human voice and communication. Professor Kalpetta Narayanan fondly remembered the immense contributions made by legendary literary personalities who were associated with Akashvani Kozhikode. He recalled that Jnanpith award-winning poet Akitham Achyuthan Nambudiri had served as a broadcaster at the station and enriched listeners through his powerful literature. He also remembered the contributions of renowned poet N.N. Kakkad, celebrated writer and drama producer Thikodian, noted novelist Urub, and famous drama artist Khan Kavil. Their voices and creative works, he said, had left a lasting influence on generations of listeners across Kerala. The inaugural session was attended by writers, artists, radio professionals and listeners. Speakers highlighted the unique role played by Akashvani in promoting literature, culture and social awareness through decades of meaningful broadcasting. They also noted that radio continues to remain close to the hearts of people despite the growth of modern digital media platforms. The three-day festival will conclude on Thursday. Special sessions on literature and cinema, poetry and music are being organized tomorrow with the participation of eminent personalities from the respective field. Cultural interactions and discussions on the evolution of broadcasting are also part of the celebrations. The Legacy 2026 Literary Fest is being viewed as a tribute to their rich heritage of Akashvani Kozhikode and its enduring contribution to Malayalam language, literature and culture over the past 75 years. सुरेश वीके फॉर परिक्रमा आकाशवाणी न्यूज कोझिकोड.
1: और अब चलते हैं मुंबई की ओर. जैसा कि आज पूरा विश्व प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और जब हम प्रदूषण की बात करते हैं और उससे होने वाले परिणामों की बात करते हैं तो अक्सर ये जो चर्चाएं हैं वो जलवायु प्रदूषण तक ही सीमित रहती हैं या फिर वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं. लेकिन पुराने फटे हुए कपड़े जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से फेंक देते हैं वे भी जमीन के प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं. और अगर ये कपड़े जलाए जाएं तो वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है. इसी समस्या का छोटा सा समाधान ढूंढा है नवी मुंबई के वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र यानी TRF ने. आइए जानते हैं कि किस तरह से ये सेंटर काम कर रहा है हमारी संवाददाता की इस रिपोर्ट में.
3: नवी मुंबई नगर निकाय के माध्यम से नवी मुंबई के बेलापुर में चल रहा वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र देश में इस तरह की पहली पहल है. पुराने कपड़ों की पुनर्प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की इस पूरी चक्राकार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण इस केंद्र ने प्रस्तुत किया है. कपड़ों के एकत्रीकरण से लेकर उनसे अपसाइकल्ड वस्तुएं बनाने की पूरी प्रक्रिया हमें बता रही है नवी मुंबई नगर निकाय के उद्यान विभाग की उपायुक्त स्मिता काळे.
4: इसके लिए दो सिस्टम्स अवेलेबल है. स्टेज में 250 गृह निर्माण संस्थाओं का चयन किया गया जहां पे एक बिन रखा गया जो सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को कलेक्ट करता है और दूसरा है RRR सेंटर्स. यहां पे जिसको भी जो कपड़ा नहीं चाहिए वो वहां पे रख सकते हैं. तो ये दोनों सोर्स से महापालिका का जो विशेष कलेक्शन व्हीकल ये सब पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को उठाता है और फिर TRF सेंटर में जमा कर देता है. वहां पे उसको तोला जाता है और उस कपड़े को हम पांच श्रेणी में विभाजित करते हैं. पुनर्वापर योग्य,

0: साइकिलिंग, डाउन साइकिलिंग, रिसाइकिलिंग या फिर अनुपयोगी योग्य। इस वर्गीकरण के उपरांत उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है। वो जो कपड़ा है उस कपड़े के धागे अलग किए जाते हैं, उसको यार्न भी बोलते हैं। तो ये जो यार्न निकलते हैं, इस यार्न से जो भी वस्तुएं हम यूज में ला सकते हैं, ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जैसे बैग्स है, मैट्स है, कुछ एसेसरीज है, होम डेकोर आइटम्स है। इस TRF सेंटर में लास्ट ईयर 41.5 मेट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट का संकलन किया गया है और उससे 41,000 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया गया है।
1: ये केंद्र पर्यावरण में जाने वाले वस्त्र कचरे को कम करने के साथ ही स्थानीय महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का काम भी कर रहा है। एक केंद्र से शुरू हुई इस पहल के लिए भविष्य की संभावनाएं अगणित है और इस पर काम भी चल रहा है। पहले के जमाने में पुराने कपड़ों का पुनर्वापर घर पर ही होता था, लेकिन आज के बदलते तौर की जीवन शैली को देखते हुए नवी मुंबई का वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र एक ऐसी पहल है जो नवनिर्मिति और शाश्वत जीवन शैली का महत्व हमें बताती है। परिक्रमा के लिए नवी मुंबई से स्वप्ना हरड़कर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे।
2: And let's take you all to Itanagar, where the Center for Earth Sciences and Himalayan Studies, and in collaboration with the National Center for Polar and Ocean Research and Northeastern Regional Institute of Science and Technology, has successfully completed the 5th Kangri Glacier Expedition in the transboundary Margo Chu Basin of Tawang District in Arunachal Pradesh, a critical headwater region of the larger Brahmaputra Basin system. We have a report on this.
3: The scientific expedition commenced on 4th May 2026 with the objective of undertaking detailed glacier health assessments, cryospheric monitoring and climate-linked hazard investigations in the eastern Himalayan region. One of the major observations during expedition was the development of a significant glacier sinking zone within the study area, where the glacier snout is rapidly collapsing and creating unstable terrain conditions. The team noted that such geomorphological instability could substantially increase downstream vulnerability and landscape hazards in the Margo Chu Basin. Another major concern identified was the emergence of a potentially dangerous pro-glacial lake at an elevation of nearly 16,500 feet. The newly formed lake poses a potential glacial lake outburst flood, glove, threat to the downstream regions of the Margo Chu Basin, with possible transboundary cascading impacts on vulnerable communities, ecosystems and river systems. Although the region experienced comparatively healthy winter snow accumulation this year, the expedition findings indicate that glacier melting continues at a critically high rate due to persistent climate variability and rising atmospheric temperatures across the eastern Himalayas. To strengthen long-term glacier monitoring and cryosphere research, the expedition team successfully installed 5 new scientific monitoring stakes at elevations reaching nearly 17,000 feet using a steam ice core drilling system integrated with precise differential global positioning system DGPS technology. These installations will support continued glacier mass balance assessments and surface velocity monitoring in the coming years. The team also retrieved valuable data sets from the existing automatic weather station and automatic water level recorder, including calibration and maintenance of both monitoring systems to ensure uninterrupted high-altitude environmental observations. The collected data sets will contribute towards understanding extreme weather dynamics, hydrological responses, and glacier-linked climate interactions in the region. In addition, moraine sediments and glacier meltwater samples were collected from the glacier snout for detailed laboratory investigations and geochemical analysis. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
4: और अब आपको बता देते हैं आईपीएल की अपडेट। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा।
2: And in some business news, benchmark domestic equity indices slumped for the fourth consecutive session today amid weak global cues. The Sensex plunged 1,456 points or 1.92% to close at 74,559. The Nifty shed 436 points or 1.83% to settle at 23,380. The broader market on the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 slipped over 2.5% while the small-cap 100 tumbled nearly 3.2%.

0: उन्होंने 64 से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण किया। मुंबई के अंधेरी में प्रकाश स्टूडियो की उन्होंने स्थापना की। विजय भट्ट ने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की फिल्मों में अपना योगदान दिया है।
1: We also pay tribute to Anant Vitthal Kher, known as Dhananjay Kher, who was an Indian biographer who profiled certain politicians and political activists. Considering his prolific write-ups on freedom fighters that showcased he was bestowed with Padma Bhushan by the Indian government, he was also rewarded with the Vidyarthi Award by Navanalanda Mahavir Foundation in 1977 for his acclaimed contribution to the field.
0: कथक नृत्यांगना अलकनंदा देवी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। वे प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी की बड़ी बहन थी। अलकनंदा देवी का ताल्लुक

0: वाराणसी से था, हालांकि उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलकनंदा जी ने फिल्मों में भी काम किया। सोहराब मोदी की फिल्म हुमायूं में उन्होंने नृत्य किया।
1: And today we also pay tribute to Ghanshyam Nayak, who was an Indian drama, film and television actor. He first achieved fame as a child artist in the 1960s movie Masoom and the song Nani Teri Morni Ko Mor Le Gaye. Who doesn't know this song? His last memorable role was of Natwarlal Prabhashankar Udhaiwala or Nattu Kaka in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma.
0: जी, और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर की आज जयंती है। उन्होंने ये उपलब्धि 1956 में हासिल की। भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नंदू नाटेकर ये पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेटर और वायुसेना की पूर्व अधिकारी शिखा पांडे आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अनुजा को
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
2: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि एआई का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ये समय है आपके अपने प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। जी हाँ, वही गाते गुनगुनाते जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत सारे सवाल, जिनके जवाब आप बहुत ही जल्दी से टाइप करके, यानी कि फिल्म के नाम पहचान कर हमें टाइप करके भेज देते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। तो इससे पहले कि हम इस सिलसिले को शुरू करें, अपना जो क्विज हम हर बार इसमें लेकर आते हैं आपके लिए, इसकी शुरुआत से पहले एक बहुत ही खूबसूरत गाना देवदास फिल्म से आप सबके लिए, ये रहा।

जी, तो आज की पहली पहेली आप सबके लिए है 90s की एक एपिक क्राइम एक्शन फिल्म से। 90s में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस साल की ये तीसरी सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली जो है वो फिल्म बन गई। और आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है, और हो सकता है आपको ये बात पहले से भी पता हो कि इस फिल्म में पहली बार सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और ऐसी टेक्नोलॉजी जब पहली बार इस्तेमाल की गई तो इस फिल्म को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जो है जगह मिली। आनंद बख्शी की कलम से निकले गीतों के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने जो गाने फिल्म इंडस्ट्री को दिए वो तो काबिले तारीफ रहे ही। इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में 6 नॉमिनेशंस अपने नाम किए और 3 कैटेगरीज में इस फिल्म ने अवार्ड जो हैं वो जीते भी। हीरो और हीरोइन की एक साथ ये तीसरी फिल्म थी और हीरोइन का इसमें डबल रोल भी रहा, यानी कि आप इन बातों को हिंट्स की तरह ले सकते हैं, यानी कि ये आपको ये पजल, ये क्विज, जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं, ये पहेली, इन्हें सॉल्व करने में बहुत जो है वो मदद देगी। अगर ये सब कड़ियां आप जोड़ चुके हैं और फिल्म के नाम तक पहुंच चुके हैं तो आप जल्दी से अपना आंसर यानी कि फिल्म का नाम टाइप करके भेज दें fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और मैं ऐसा हर बार कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि आप हमें जब ईमेल करते हैं तो ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में आप सिर्फ फिल्म का नाम लिखकर भेज दें, क्योंकि सेंडर नेम में आपका नाम पहुंच जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जल्द से जल्द आपके जो नाम पहुंचेंगे उतनी ही जल्द हम उन्हें शामिल कर पाएंगे, उस ऑर्डर में शामिल करेंगे। 1, 2, 3 किसने सबसे पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर सही जवाब लिखकर भेजा। तब तक मैं आपको ये गाना सुनवा रही हूँ, हीरो नंबर 1 से ये प्यारा सा गाना।

जी, आपके जो जवाब हैं वो हमें मिल गए हैं और पहला जवाब जो आया है वो तो सही है, उसके बाद कुछ जवाब आए हैं जो सही नहीं है। तो पहला सही जवाब तो टाइम पे आया है और 5:20 पर नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर दिल्ली से ही हमें सही जवाब लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम बाद में बताऊंगी क्योंकि कुछ लोग सुनने के बाद भी आंसर टाइप करके भेज देते हैं, है ना। तो पहला सही जवाब नवीन भाटिया ने दिया है, दूसरा सही जवाब दिया है सतप्रकाश गोयल ने रोहिणी से, आपके साथ प्रकाश गोगिया जागृति एनक्लेव से हैं, और इसके बाद तीसरा सही जवाब अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनारा ने दिया है मुंबई से। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बिल्कुल सही तरीके से पहचान लिया है फिल्म का नाम। और इसके बाद हमें सही जवाब उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सुनीत कुमार ने खयाला से लिखकर भेजा है, और मुझे लगता है कि इसी के साथ सभी सही जवाब जो हैं, और या यूं कहें कि आपके सभी जवाब आ चुके हैं अब तक। तो फिल्म का नाम है खुदा गवाह और इस फिल्म में एक्टिंग की अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेंगजोपा, और एक खूबसूरत सा गाना इस फिल्म से मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं, जी हाँ, दस्तूर कहता है कि अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाए ताकि आप उसका आंसर टाइप करें, और तब तक मैं आपको पहले फिल्म का गाना सुनवाऊँ। तो भाई अगला जो आपके लिए सवाल है, तो 90s में राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई जिसमें परेश रावल, सौरभ शुक्ला, शेफाली शाह और अरुण बाली जैसे कलाकारों ने काम किया, यानी कि मेन लीड के अलावा इन लोगों ने भी काम किया। और एक और दिलचस्प बात जो है आपको फिल्म के नाम तक पहुंचाने में मदद करेगी वो ये है कि इस फिल्म ने 6 फिल्मफेयर अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। वैसे एक और हिंट मन कर रहा है कि मैं आपको दे दूं तो वो ये है कि इसमें एक कैरेक्टर का नाम कल्लू मामा भी है। तो मुझे लगता है कि ये हिंट जो है अब तो आप गेस कर चुके हैं फिल्म का नाम। अगर गेस कर लिया है तो जल्दी से टाइप करके भेजें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर, और मैं आपको फिलहाल सुनवा रही हूँ खुदा गवाह फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माय यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का गाते गुनगुनाते में। और हम आपसे दूसरा सवाल पूछ चुके हैं जिसके जवाब हमारे ईमेल आईडी पर पहुंच गए हैं। वैसे मैं बता दूं, जिसने अगर अभी ट्यून इन किया है आप में से किसी ने, तो गाते गुनगुनाते में मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आती हूं जिनके जवाब यानी कि फिल्म के नाम पहचान कर आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते हैं। तो दूसरे सवाल की अब बारी है, यानी कि जवाब की बारी है। सवाल तो पूछा जा चुका है, तो पहला सही आंसर जो है वो हमारे पास पहुंचता है, नागेंद्र ठक्कर ने लिखकर भेजा है। इसके बाद मिलिंद खड़के जो हैं ये दूसरे नंबर पर हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और नवीन भाटिया साहब ने दिल्ली से तीसरे नंबर पर सही जवाब लिखकर भेजा है। इसके बाद इदरीस सैफी, बबलेश पवार, राजेश शाह और परिमल झा, सतप्रकाश गोयल रोहिणी से और प्रकाश गोगिया जागृति एनक्लेव दिल्ली से ही सही जवाब लिखकर भेजते हैं। और अनु बड़जात्या, शमशूल खान, अनुराज बेनारा ने भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। गिरीश और वैशाली बम जो हैं वो, और मुकुंद भी हैं इनके साथ, ये वडोदरा से बिल्कुल सही पहचान कर भेजते हैं हमें फिल्म का नाम। और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान भी बिल्कुल सही पहचान लेते हैं। उमेश कुमार साहब ने खयाला से सही सही पहचाना है। और वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसर और प्रमिला भावसर ने भी बिल्कुल सही पहचान लिया है। प्रकाश गोगिया, उग्रसेन यादव, मुझे लगा आपने सही जवाब लिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं सवाल फिर दोहराइए। अरे सवाल हो गया, अब अगला सवाल आएगा उग्रसेन जी, उसके लिए तैयारी कीजिए। फिल्म का नाम है सत्या। जी हाँ, सत्या है वो फिल्म राम गोपाल वर्मा की, जिसकी जो है मैंने आपसे इस समय जिक्र किया और कुछ सवाल उससे जुड़े पूछे आपसे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक्टिंग की जेडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी ने, बाकी बहुत सारे कलाकारों के नाम मैंने आपसे सवाल के दौरान जो है उनका जिक्र किया था। इस फिल्म से आपको गाना जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अब एक और सवाल पूछने की बारी आ गई है। तो जिन लोगों का मिस हो गया है या जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है वो अब इस सवाल का जवाब भी लिखकर भेज सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि जवाब सही होगा तभी आपका नाम यहाँ जो है लिया जाएगा, और टाइम पर अगर आप जवाब भेजेंगे तो। तो अगला सवाल आपके लिए 90s की ही एक मल्टी स्टारर फिल्म से है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फिल्म शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी, या शायद ही कोई घर ऐसा रहा होगा जिसमें पूरे परिवार ने बैठकर एक साथ किसी संडे या सैटरडे को या किसी और वीकडे में भी ये फिल्म ना देखी हो। सभी ने ये फिल्म देखी होगी ऐसा मुझे लगता है। ये ऐसी फिल्म है जिसे अभी भी आप देखेंगे ना, देखने के बाद भी, तो भी आप बोर नहीं होंगे। तो कौन सी है ये फिल्म, ये आपको गेस करनी है। कुछ बातें और बता देती हूँ, आप कहेंगे ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हैं, पारिवारिक फिल्में अगर मैं बात कर रही हूँ तो। बॉलीवुड में ये सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों में शामिल है, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो इस फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए, और फिल्म फेयर अवार्ड पर अगर हम आए तो 4 फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं। अगर आपने पहचान ली है फिल्म तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक हिंट और आपको दे देती हूँ। अब मुझे ये लगता है कि ये हिंट देते ही के साथ आप कहेंगे कि ये बहुत ही आसान सवाल बना दिया अपराजिता ने, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि एक और बात आपको इस फिल्म से जुड़ी बता देती हूँ। सूरज बड़जात्या की ये फिल्म है जिसमें जो है संगीत रहा राम लक्ष्मण का। तो अगर अब आप इस फिल्म को पहचान चुके हैं तो आप जल्दी से जवाब जो है वो हमारे ईमेल आईडी यानी कि fmgoldairdelhi@gmail.com पर लिखकर भेज दें। फिल्म का नाम आप पहचान चुके हैं ऐसा मुझे आभास हो रहा है, और जल्दी से आपको जवाब लिखकर भेजने हैं। फिलहाल बारी आ गई है सत्या फिल्म से आपको ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाने की।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप अपराजिता के साथ, और अब बारी है आपके जवाबों को लेने की। और जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे हिंट्स देने के बाद, क्योंकि इस फिल्म में मैंने प्यार किया के साथ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए आपने सही फिल्म का नाम भी लिखा और कईयों ने मैंने प्यार किया भी लिखा। तो पहला सही जवाब जो हमारे पास पहुंचता है वो आया है प्रणव शिंदे का, और इसके बाद दूसरे नंबर पर सही जवाब मिलिंद खड़के ने लिखकर भेजा है, और तीसरे नंबर पर अजीत भावसर विरमगाम गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ बिल्कुल सही पहचानते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और इसके बाद ललित कुमार ने नोएडा से सही पहचाना, इद्रिस सैफी ने मूलाहेड़ा गांव NCR से, भारती ने भी जवाब सही लिखकर भेजा है, और कुंवर सिंह डॉक्टर कुंवर सिंह भी बिल्कुल सही पहचानते हैं, और इसके बाद राजेश मानक लाल शाह परिमल झा आपने भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया है, विप्लव ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है, और इसके बाद गिरीश बम का वैशाली से बिल्कुल सही जवाब आता है, सतप्रकाश सनौठिया रोहिणी से हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और इसके बाद उमेश कुमार खयाला से, उग्रसेन यादव और अपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान, बबलेश पवार बाड़मेर से बिल्कुल सही सही पहचान लेते हैं, और इसके साथ अनुबर जातिया, शमशूल खान, अनुराज बेनारा ने बिल्कुल सही पहचाना है, और मधु किरण का भी बिल्कुल सही जवाब आया है। हम आपके हैं कौन, इस जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था मल्टी स्टारर फिल्म है, तो बहुत सारे किरदार हैं इसमें, और सभी ने क्या बढ़िया, मैं ये कहना चाहूँगी क्या बढ़िया एक्टिंग की है, बिल्कुल जिस कैरेक्टर को निभा रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे उसे जी रहे हैं। माधुरी दीक्षित इसमें निशा के रोल में नजर आई, सलमान खान ने प्रेम का किरदार निभाया, और वैसे सलमान खान उस समय काफ़ी फिल्मों में प्रेम नाम का जो रोल है या किरदार है, जो कैरेक्टर नेम है, उसे निभाते थे। मोनीश बहल फिल्म में रहे राजेश के नाम से, और रेणुका शहाणे पूजा चौधरी यानी कि निशा की बहन बनी है, माधुरी दीक्षित की बहन के किरदार में नजर आई। आलोक नाथ, रीमा लागू, अनुपम खेर, इन सबकी बहुत ही बढ़िया भूमिका इस फिल्म में देखने को मिली। तो इस फिल्म से वैसे तो इस फिल्म में सभी गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ये गाना जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं ये भी आपको पसंद आएगा, लता जी की आवाज में, और साथ में किसकी आवाज आप सुनेंगे आप खुद बताएंगे किसकी आवाज है। आप सब आवाजों को पहचानते हैं, और जब आप ये जानते हैं एक दो हिंट बताते ही कि फिल्म कौन सी है, तो आपने इन सब चीजों में मास्टरी की हुई है। तो सुनते हैं ये गाना, दीदी तेरा देवर दीवाना।

बिल्कुल सही पहचाना है आपने, ये आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम की। और आप सबने जवाब भी अपने लिखकर भेजे, प्रणव शिंदे, नवीन भाटिया, मोहम्मद सईद अब्बासी, सतप्रकाश गोयल, डीबी राणा, गिरीश बम और विप्लव ने भी बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजा। जाने से पहले दिल तो पागल है से इस प्यारे से गाने के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ। लता जी और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ये समय है कार्यक्रम सदाबहार गीत का। हमारी स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है 6:11 और आपके साथ हूँ मैं ज्योति भारती। तो दोस्तों, आज शाम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेंगे। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले, जिसमें होंगे पुराने गीत। 8:10 पर कार्यक्रम होगा मधुरिमा, और ये कार्यक्रम होगा रागों पर आधारित गीतों का। 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम हर सिंगार का, और 11:10 पर आप लुत्फ उठा सकेंगे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत का। आइए कार्यक्रम सदाबहार गीत में सुनते हैं पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म अभिलाषा से।

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और सदाबहार गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म फ़र्ज़ से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत और फिलहाल इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी 7:25 पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए के भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू राजेश।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: Benchmark domestic indices slump nearly 2%. Sensex declines over 1,400 points. Nifty settles below 23,400. India's retail inflation increases to 3.48% in April this year. And global crude oil prices continue upward trend.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 2% की गिरावट, सेंसेक्स में 1,400 अंकों से अधिक का नुकसान, निफ्टी 23,400 के स्तर से नीचे फिसला। अप्रैल माह के दौरान घरेलू खुदरा महंगाई दर बढ़त से 3.48% दर्ज और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1,456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.83% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.2% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। कारोबार की शुरुआत में आज बाजार मंदी के साथ खुले और वैश्विक बाजारों के संकेतों से बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices slumped for the fourth consecutive session today amid weak global cues. The Sensex plunged 1,456 points or 1.92% to close at 74,559. The Nifty shed 436 points or 1.83% to settle at 23,380. The broader market on the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 slipped over 2.5%, while the small-cap 100 tumbled nearly 3.2%. Earlier, the markets opened lower and continued to witness persistent selling pressure throughout the trading session.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 29 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। गिरावट वाले प्रमुख कंपनियों

0: लाइन रिमेन्ड अनचेंज्ड।
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 98.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। मिश्रा भट्टाचार्य, किस तरह से आंकते हैं?
2: आशा थी, वो आशा की किरणें थोड़ी दूर चली जा रही हैं, क्योंकि अब जो फोकस जो है वो ट्रंप साहब का चाइना विजिट के ऊपर गया है। अब चाइना में वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ताइवान के साथ क्या समझौता होता है चाइना के ज़रिए, उसके ऊपर नज़र टिका हुआ है। और इस तरफ ईरान की जो है युद्धवृत्ति की जो आशाएं ये थी वो सॉर्ट ऑफ एवेपोरेट करने को लगी हैं। तो और तेलों के दाम उसी हिसाब से बढ़ भी गए हैं। तो एक तो हुआ कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट हुआ है, और दूसरी और ये हुआ है कि जो डोमेस्टिक वातावरण में सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है पिछले दो दिनों में कि सख्त कमर कसने की ज़रूरत है, ऑस्टेरिटी ड्राइव की ज़रूरत है, विदेश यात्रा में एक अंकुश लगाना ज़रूरी है, और जो सोना खरीदने के ऊपर थोड़ी बहुत जो चाहत जो है उसमें कमी करनी चाहिए। तो ये सारे वातावरण से
1: मतलब जहाँ जहाँ विदेशी मुद्रा सीधे तौर पे इन्वॉल्व है वहाँ बचना चाहिए।
2: देखिए करीबन हमारी जो जो जो हम आयात करते हैं उसकी एक तिहाई आयात चार चीज़ों से होती है। एक तो होता है सोना, दूसरा होता है क्रूड ऑयल, तीसरा होता है जो खाने का तेल, और चौथा होता है फर्टिलाइज़र, उर्वरक चीज़ें। तो ये चारों चीज़ों में मैं समझता हूँ कि किस तरह से जो विदेशी मुद्रा का कुछ जो संचय कर सकें हम, उसके लिए सरकार की पूरी तरह से ये मनोवासना है कि वो होनी भी चाहिए कि ये कंट्रोल चेक किया जाए। उसका मतलब ये है क्या कि रिटेल प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ेंगे, जो तेलों के कंपनी के जो ऐलान गए हैं कि पेट्रोल का दाम में 20 रुपये प्रति लीटर की शायद कमी है इस वक्त, और जो डीजल में है वो पहले तो कह रहे थे 100 रुपये की, अब कह रहे हैं 40 रुपये की, पर जो ऐलान जो हो रही है 30,000 करोड़ की जो तेल कंपनी की जो मंथली घाटा जो है उसका भी एक इम्पैक्ट हो रहा है। तो सब मिला के मार्केट को ये महसूस हो गया है कि ये जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जो हम कह रहे थे वो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट प्राइस के ऊपर आने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आप देखा कि मार्केट में सब स्टॉक प्राइसेस नीचे गए हैं करीबन, जैसे आपने कहा कि 1.9% की गिरावट हुई है, करीबन 12 लाख करोड़ की जो
1: चपत लगी है,
2: चपत लगी है। पर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट सेंसिटिव है। सरकार ने ऐलान किया है कि जो रॉयल्टी रेट्स हुए जो ऑयल कंपनीज के ऊपर ONGC ओएल के ऊपर उन्होंने कट कर दिया, सरकार ने काट दिया है। उससे आप देखेंगे सिर्फ ऐसी सेक्टर है आज की मार्केट में ONGC और ओएल की शेयर, ONGC की जो स्टॉक प्राइस है वो 5% बढ़ गई है, ओएल की भी करीबन 3-4% बढ़ गई है। इसका मतलब मार्केट बहुत ही बेताब बेसब्री से देख रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक तरफ तो ये सब जो चीज़ें मैंने कही आपको उसके लिए मार्केट नीचे गया है, पर यह भी है कि तेल कंपनियों की जो थोड़ी बहुत जो उनकी इंक्रीज जो होगी अर्निंग्स में उनके घाटे में या थोड़ी बहुत रोक लगेगी उसके लिए भी मार्केट ने उसका एक सिग्नल दे दिया है।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, शार्प डिक्लाइंस ऑफ 2% टू 4% वर रजिस्टर्ड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, Realty, PSU, banks, oil and gas sectors, while the defensive sectors offered relative cushions during today's and yesterday's sell-off. Now, what is the rotation from cyclicals to defensive signal about institutional investor conviction in India's growth story? And is this a temporary risk-off move or the beginning of a deeper structural correction?
2: I don't think it is a structural correction. What is happening is a certain reassessment of the consumption sector's potential demand. Now, what is the big challenge that the Indian economy, or for that matter any emerging economy, will have to face in the current situation

0: सीपीआई।
1: जी नजर डालते हैं खुदरा मुद्रास्फीति पर। अप्रैल के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर मामूली बढ़त से 3.48% दर्ज हुई। इसे पिछले माह मुद्रास्फीति की दर 3.4% थी। लगातार चौथे महीने खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़त दर्ज हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार आधार वर्ष में बदलाव के बाद मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त के साथ 3.74% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर मामूली बढ़त से 3.16% दर्ज हुई। इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 3.87% से बढ़कर 4.2% हो गई। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बावजूद घरेलू महंगाई दर रिजर्व बैंक के निर्धारित सीमा में ही दर्ज हुई है। महंगी होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम आभूषण, टमाटर और नारियल जैसे उत्पाद प्रमुख रूप से रहे। हालांकि अप्रैल के आंकड़े हैं, क्या हमें ये मानना चाहिए कि अप्रैल के आंकड़ों से हमें इस बात का आभास हो जाता है कि मई का जो महीने के बाद हम जो खासतौर पे जो रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे वहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ नज़र आया, ज़्यादा
2: आपने एकदम सही कहा। जो जो इस जो डेटा जो आई है वो पूरी तरह से जो इम्पैक्ट जो हुआ है उसको कैप्चर नहीं किया है। और आपको ये भी देखना होगा कि इस समय जो जो जो जो रिटेल जो पेट्रोल एंड डीजल है उनके दाम भी बढ़े नहीं हैं, तो और वो एक ऐसी चीज़ है जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट में बहुत काम वो करती है, इम्पैक्ट करती है। तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं और जो हम बात हमने अभी डिस्कस की है उसके साथ बहुत बड़ा अंतर है
1: जी।
2: तो अप्रैल का जो ये 3.48% का जो रिटेल खुदरा जो मुद्रास्फीति आपने बताया है
1: जी,
2: ये जो हमारी जो क्राइसिस की जो जो आकार जो होने वाली है उसको नहीं दर्शाती है। मैं समझता हूँ कि अगर दाम बढ़े और उसके साथ साथ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट के साथ साथ बहुत चीज़ों की जो पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल करते हैं उनके भी दाम बढ़े, तो मैं समझता हूँ तब देखना पड़ेगा कि वो आरबीआई की जो 4% की जो टारगेट रेट जो है उससे बढ़ती है। मेरा मानना है कि आरबीआई का जो अपना ही जो अनुमान जो है वो उसमें बढ़ने की पूरी तरह से हम
1: आशंकाएं हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा विशेषज्ञ एक्सपर्ट के तौर पे, अगर जिस तरह से राजेश ने जिक्र किया अगर हॉर्मोज वाला संकट हल हो जाता है तो भी हमको इस तरह की महंगाई के आंकड़ों से पार पाने में कितना समय लग सकता है?
2: देखिए अगर मान लीजिए ये हार्मोन्स की जो समस्या है कल ख़त्म होती है तो मैं मानता हूँ कि इसकी जो प्रोलॉन्ग जो इम्पैक्ट होती है करीबन एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक चलेगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जो जो रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने रिफाइनरीज के पास इतना तेल उनके टैंक्स में आ गया है कि उन्होंने एक समय आ गया है कि वो बहुत करीब हैं उस समय के जब उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा शायद। और जिस दिन वो बंद करें उसका मतलब है कि उसकी जो साइकिल होती है वो एक बार अगर बंद कर दें तो वो पूरी साइकिल वापस लाने में बहुत समय लगता है। और ये चीज़ जो क्लियर होने माइनिंग क्लियर होने में तो 6 से 8 महीने की समय मिनिमम ये क्लियरेंस का लगेगा। मतलब तो आज की तारीख में ठीक होगा तो 6 महीने समझ लीजिए उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स तक रहेंगे।
1: तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको अपने अपने
2: कमर कस लेनी है
1: और कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना, शायद अगर खर्च के हिसाब से थोड़ा सा कम करना है चाहे वो खाद्य तेल हो चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो चाहे विदेश यात्राएं हैं चाहे सोने के प्रति ललक हो उसको तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या इन सब चीज़ों से हम मान सकते हैं कि फौरी तौर पर ही सही लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है खासतौर पर जब सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है?
2: देखिए जो जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं मानता हूँ कि एक अच्छी एक उन्होंने एक एक मैसेज दिया है, पर उसके साथ साथ जो पॉलिसी ऑप्शंस जो हैं उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए
1: जी।
2: वो पॉलिसी ऑप्शंस पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ाना, गोल्ड के ऊपर क्या करना कंट्रोल करना चाहिए या रेमिटेंसेस के ऊपर क्या करना चाहिए, सरकार को जो उचित समझा है उनको करना चाहिए। और ये पॉलिसी ऑप्शंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, सिर्फ लोगों को एहसास दिलाना कमर कसने
1: अपील के साथ साथ कुछ न कुछ तुरंत
2: कुछ पॉलिसी एक्शन की बहुत सख्त जरूरत है।
1: नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पे। एशिया बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक तथा हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की मामूली गिरावट से बंद हुए। हालांकि जापान का निकेई 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मंदी ही नजर आई। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% से 1.3% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
0: The benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq composite closed at record highs yesterday, supported by technology stocks. This happened despite a rise in oil prices after US President Donald Trump rejected Iran's latest proposal to end the war. The S&P 500 advanced 0.2% to 7,413. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2% to close at 49,704. The Nasdaq Composite Index added 0.1% to 26,274. Meanwhile, investors will closely watch the CPI data, corporate earnings, and a high-stakes meeting between the leaders of the U.S. and China scheduled for this week. What is your expectation from the U.S.-China talks, which is scheduled to happen next week, and what good or bad can it bring for the world economy?
2: Well, the overt expectations which we all see is what kind of arrangement the Chinese and the US reach on how to treat Taiwan and Taiwan's ambitions, aspirations. There is expectation that probably Mr. Xi and Mr. Trump will reach an agreement by which Taiwan's aspiration, genuine aspiration, legitimate aspirations are addressed and taken care of. But the unstated expectation in this thing is to what extent Mr. Trump is influenced and persuaded by Mr. Xi to find an early resolution of the Strait of Hormuz crisis. Remember, China is among those countries who are very, very badly affected by the Strait of Hormuz blockade. One can expect that probably this discussion will also try to find an early solution to the Strait of Hormuz problem.
0: Okay, they're meeting on May 13 on 2:15, and they will cover trade, Taiwan, Iran, and rare earths simultaneously. According to what is the probability that geopolitical fault lines that we are discussing about the US, China, Iran compound into a multi-front crisis that reshapes actually global supply chains irreversibly?
2: I have a feeling that given the political calendar in the remaining months, my reading is that early solution will have to be found out by them, because both Mr. Xi as well as Mr. Trump have domestic politics to also to be taken care of. So I don't expect any further escalation, but on the contrary, there is a slim hope that there may be some resolution on the cards.
0: Okay. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, be they maybe economic, technological, or geopolitical. Speaking at the Confederation of Indian Industry Annual Business Summit 2026 in New Delhi, he stated that the country has never buckled under pressure and has always emerged stronger during challenging times.
3: The world today, with a fragmented geopolitical and business situation, is facing a crisis every day. But look at the India story within this crisis. Our economy remains robust, very strong fundamentals. The IMF says if you have 8 to 12 months of foreign exchange reserves to cover your imports, you are considered in a very strong position. We have 11 months cover on our imports. We've had a record year in exports. We've exported, the final figure will be out in a couple of days, but roughly $863 billion, which is an all-time high. And our trade deficit, goods and services together, is less than our annual remittance.
0: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that while many nations have faced skyrocketing prices and fuel shortages over the last few months, India has managed to keep domestic prices relatively stable. The minister said this while addressing CII Annual Business Summit 2026 in New Delhi.
4: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about

0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Vandhi Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest.
1: On the 14th and 15th of this month, the BRICS foreign ministers meeting is being held, which we are chairing. The prime minister's first stop will be the United Arab Emirates. Apart from that, the other four countries to be visited are Norway, Sweden, Italy and Netherlands.
0: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said both sides are now working closely to further deepen the partnership. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security. He added that there will also be talks on increasing trade and investment between the two countries. On Mr. Modi's visit to Norway, Sweden, Italy and the Netherlands, Mr. Jaiswal said that these countries are also the centers for innovation and clean energy technologies, and discussions on these matters will be held during the Prime Minister's visit. Replying to question on reports regarding China's support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Jaiswal said that these reports corroborate what was known earlier. He said that Operation Sindoor was a precise, targeted and calibrated response to the terrorist attacks in Pahalgam aimed at destroying state-sponsored terrorist infrastructure operating out of Pakistan and at its behest. Mr. Jaiswal said that as per India's neighborhood first policy, New Delhi continues to support these countries with energy supplies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, be it economic, technological or geopolitical. Speaking at the CII Annual Business Summit 2026 on next-gen labor reforms, driving industry growth and job creation in New Delhi, he said, the country currently has sufficient foreign exchange reserves to cover nearly 11 months of imports, placing the country in a very strong position globally. Speaking at the summit, Education Minister Dharmendra Pradhan stressed the need for a skill-based education system and said a strong credit system must be developed under the national education policy. Meanwhile, Niti Aayog member Rajiv Gauba said, in order to establish the structural foundation for India's future economy, the government has enhanced our connectivity via PM Gati Shakti, broadened highways and developed the Vande Bharat rail network. He added that the country must seize this moment to ensure India remains on this trajectory of bright and resilient growth. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The government today said those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed so that the future of students are not adversely impacted. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said that the agency will refund the amount of NEET UG examination fees to students. He said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts. Department of School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar has said that NCERT and CBSE have jointly introduced a new curriculum on computational thinking and artificial intelligence for students from class 3 to 8. Speaking on the initiative, Mr. Kumar said the curriculum has already been rolled out. And in IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: Surkhiyon mein. नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक संयम विषय पर चर्चा करेंगे। और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: शरद जी, से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
4: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
2: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है, अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
3: देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सब का भुगतान पेट्रोडॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ये इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रोडॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रोडॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $700 बिलियन से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है, कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां पर बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में, वेस्ट एशिया में, कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा, क्योंकि 14 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया, तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले, वो एक दफे फिर सोमवार जैसी सुबह हुई, फिर वो 105 पॉइंट भी, तो ये ऐसा लगने लगा कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर ये चलता रहा तो जिस प्रकार से रुपए पर दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि भाई लोग अगर इसमें अपना योगदान दें, 140-145 करोड़ की जनता है, लोग इसमें अगर अपना योगदान देते हैं
2: जी,
3: तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। उसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
2: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, उसको कम से कम व्यय किया जाए।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा।

0: होगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं। लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था, वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
2: जी हाँ, प्रधानमंत्री जी तो देखिए शुरू से ही स्वदेशी के ऊपर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, और छोटी छोटी बातों में कहते हैं। पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनू जुड़ा, वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं, जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप 3 आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनकी जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुनके, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115 से $120 बिलियन का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, इससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इम्पोर्ट बिल, जिसको हम कहते हैं आयात का जो पूरा खर्च है, उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है। क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है, क्रूड ऑयल आता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो B2B होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60 से 70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू के 99% सोना भारत का आयात किया जाता है, तो उसमें 60 से 70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे विदेशी मुद्रा आती भी है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है। तभी उन्होंने सोने के लिए अलग से कहा, जो उन्होंने एक साल की बात कही कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदे। और मैं देखिए ये कहना चाहूंगा, क्योंकि सोना भारत में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप सोने को रिसाइकल करिए ना। एक अनऑफिशियल एस्टिमेट आया कि भारत में 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। तो जो आपके पास पुराने फैशन के हार पड़े हैं, कंगन पड़े हैं, चेन पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, और अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, शादी ब्याह का मौका है, फंक्शन है, कहीं देना चाहते हैं, तो उस सोने को आप लाइए टेबल पे। एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने अभी किसी फेमस क्रिकेटर को हायर किया सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकिल किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल, सोना खरीदने को मना किया उन्होंने, सोना पहनने को या सोना रिसाइकल करने को उन्हें मना नहीं किया।
1: बिल्कुल शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अभी 70 दिनों से अधिक हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और हमने देखा है कि बाकी जो विकासशील देश है और विकसित देश है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं 50%, कहीं उससे भी ज्यादा, बहुत अवेलेबिलिटी पर भी असर हुआ है। भारत ने अभी तक जिस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील किया है, आप कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये देखते हुए कि शायद ये क्राइसिस लंबा चल सकता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको लगता है जो सरकार ने ये अपील की है, ये एक इंक्लूसिव अपील है, सबको साथ में लेते हुए, और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई एक स्टेप है?
2: बिल्कुल, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका को स्वयं देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा तेल का वहां पर उत्पादन होता है, उनके स्वयं अपने देश में कीमतें डबल हो चुकी है, वहां पर इसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही, उस दम पर भारत इसको झेल पाया। परंतु प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि इसका दबाव भारत सरकार

0: आधार पर भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एक घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर सरकार कह सकती है सबका साथ सबका विश्वास, तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी। और मैं तो ऐसा मानता हूं, सोनू, के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठा के तो नहीं हुआ युद्ध के मोर्चे पर, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
1: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है, जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी जैसा आपने समझाया एक अर्थशास्त्री के तौर पर, उसे गहराई से समझना चाहिए।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए जो अर्थशास्त्र है, मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता, तो ये बड़ा नहीं कि तो मैं बात अलग है।
1: इनफैक्ट अब आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
0: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं, तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा कि अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे तो नहीं कि हम, अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है, तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा? जी हाँ, बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सोनू,
1: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हमारी स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है 7:26 और ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आपके साथ मैं हूँ ज्योति भारती। और दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सूरज से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ ढले और अभी जो गीत आपको सुनवाया वो सुनवाया फिल्म सूरज से। और दोस्तों इस फिल्म की एक खासियत हम आपको बताते हैं, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टी प्रकाश राव ने। चूंकि इसमें जो मुख्य भूमिकाओं में है वो है राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, साथ में जो साथी कलाकार है मुमताज और जॉनी वॉकर और अजीत भी है। शंकर जयकिशन का संगीत है, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की ये फिल्म। खास बात दोस्तों इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म में जो गीत लिखे हैं वो दो लोगों ने लिखे हैं, एक शैलेंद्र ने और एक हसरत जयपुरी ने। और टी प्रकाश राव जो है वो साउथ के डायरेक्टर रहे हैं, साउथ की फिल्में उन्होंने बहुत डायरेक्ट की हैं। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में वो सक्रिय रहे, हिंदी फिल्में भी उन्होंने खूब बनाई। और उनके एक भाई हैं टी रामा राव, जिनके बारे में आप बहुत आपने सुना भी होगा। 80 के दशक में ये छाए रहे, इन्होंने साउथ इंडियन जो फिल्में थी उनका हिंदी रीमेक बनाया और एक से बढ़ के एक फिल्में 80 के दशक में टी रामा राव ने दी। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन से, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में।

दोस्तों कार्यक्रम सांझ ढले में आपने सुना यह आखिरी गीत फिल्म कारवां से जो फिल्माया गया जीतेंद्र और आशा भोसले आशा पारिख पर, और गीत लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन साहब ने। दोस्तों फिलहाल इस कार्यक्रम से मैं इजाजत लेती हूँ, बाप से मुलाकात होगी 8:10 पर, कार्यक्रम होगा मधुरिमा रागों पर आधारित। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की। स्टाइपेंड अब बढ़कर 500 से 13,500 रुपए हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की। और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा है कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नई दिल्ली में नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जरा भी संदेह हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द करना ही उचित निर्णय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। ICSSR की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: ICSR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा। हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को आवश्यक बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक मजबूत ऋण प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। नई दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि छात्रों को अधिक सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को भी ऋण ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्व की सबसे मजबूत शिक्षा प्रणाली बताया। उन्होंने कहा कि देश में 10 लाख सरकारी स्कूलों सहित लगभग 15 लाख स्कूल हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% खर्च कर रही हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि NCERT और CBSE ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल खुलने पर इन विषयों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि NCERT कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

0: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके सेवा भाव की सराहना भी की।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नर्सें केवल मरीजों की देखभाल नहीं करती बल्कि उन्हें नया जीवन देने का भी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने कोने से आए स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल बाद नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की है। इस निर्णय के बाद स्टाइपेंड को 500 रुपए से बढ़ाकर 13,150 रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर कार्य वातावरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज गुवाहाटी में असम की नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। श्रीमती गुप्ता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा को बधाई दी। उन्होंने इसे सुशासन, विकास और जनसेवा की राजनीति की जीत बताया।
2: जनता का विश्वास और माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत। असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहाँ हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा।
0: असम प्रवास के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कामाख्या मंदिर, मां बगलामुखी और उमानंद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज दिल्ली पुलिस के 9वें विशाल मादक पदार्थ निस्तारण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 1700 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 72 करोड़ रुपए है। मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई को सशक्त करने की दिशा में उपराज्यपाल ने दिल्ली के पहले समर्पित मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ANTF पुलिस थाने की भी घोषणा की। इस दौरान श्री संधू ने वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को फिर से दोहराया। उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अध्यक्ष तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी के द्वारका उपनगरी को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। एक बैठक में उन्होंने DDA के अधिकारियों को द्वारका के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री संधू ने कहा कि द्वारका में यशोभूमि निर्माणाधीन राजनयिक क्षेत्र, अर्बन एक्सटेंशन रोड और हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे निवेश के लिए उपयुक्त बनाती हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि इस तर्ज पर रोहिणी और नरेला को भी विकसित किया जाएगा। श्री संधू ने DDA को सभी हितधारकों के साथ मिलकर जल्द ही ठोस और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज चौखंडी क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि कई मामलों का मौके पर ही अधिकारियों से बात कर समाधान किया गया, वहीं अन्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार दफ्तरों से नहीं, जनता के बीच रहकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली के Zone 1 और Zone 2 के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान श्री सूद ने शिक्षा व्यवस्था, स्कूल का बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर आने वाली चुनौतियों को समझना तथा शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के सुझाव प्राप्त करना है। इस संबंध में श्री सूद ने कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों तथा डिजिटल शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के

0: निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम आगामी 11 दिनों तक लगातार आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नजफगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन कोयला बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र जुलाई तक तैयार हो जाएगा। श्री वाही ने कहा कि इस संयंत्र के तैयार हो जाने से क्षेत्र में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी और यमुना नदी में गंदगी जाने पर रोक लगेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज मॉनसून से पहले जल भराव रोकने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारती नगर, गोल्फ लिंक, तुगलक लेन और पंडारा रोड समेत कई क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। श्री चहल के अनुसार परिषद ने पहले चरण में 31 मार्च तक शत प्रतिशत डिसिल्टिंग कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा चरण अगले महीने की 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वर्ष 1956 से देश के चिकित्सा नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा को किफायती बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख ओपीडी के साथ संस्थान ने अद्वितीय गुणवत्ता के साथ रोगी देखभाल का मानक स्थापित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स नई दिल्ली एक संस्थान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र स्थापित ब्रांड भी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिशत से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था, अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की, अब 500 से बढ़कर 13,500 रुपए स्टाइपेंड हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन की कीमतें न बढ़ें। श्री भाटिया ने कांग्रेस पार्टी पर जनता को गुमराह करने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को NEET UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के GDP को त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रहे हैं 8:11 और ये समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हम रागों पर आधारित गीत, और आज का पहला गीत है राग भैरवी पर आधारित फिल्म पेइंग गेस्ट से। मोहम्मद रफी की आवाज है, एस डी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे हैं। मैं हूं आपके साथ।

0: वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: दोस्तों अगला गीत सुनवाते हैं आपको, राग भोपाली पर आधारित शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी ने गीत लिखे हैं और फिल्म है चोरी चोरी, लता जी की आवाज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मधुरिमा में ये गीत।

अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास

आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मधुरिमा। दोस्तों, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म जंगली से यमन कल्याण राग पर आधारित ये गीत है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी ने गीत लिखे हैं। इसी के साथ मैं ज्योति भारती अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजारमन। राजारमन, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हुआ। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहले दिन जीत दर्ज की। एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंचे, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक हासिल किया। और ईस्ट बंगाल ने इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग का खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 78 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को नई जान दी।
2: कल का दिन उतार चढ़ाव से गुजर रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए नई उम्मीद लेकर आया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हार का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंद में नाबाद 59 रन और प्रियांश आर्य की 33 गेंद में 56 रन की पारी का रहा। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट लिए। 211 के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 33 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद टीम के निचले मध्यक्रम ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल ने 30 गेंद में 56 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि डेविड मिलर ने 28 गेंद में 51 रन की तेज पारी खेली। अंत में आशुतोष ने 10 गेंदों में 24 और माधव तिवारी ने 8 गेंद में 18 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। माधव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही डीसी अंक तालिका में एक पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर आ गई है, जबकि लगातार चौथी हार के बाद पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर बनी हुई है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जिस प्रकार का कल का मुकाबला रहा राजारमन, कह सकते हैं क्या हम ये सोचें कि पंजाब किंग्स की टीम थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही, जो कि लगातार फील्डिंग में आप ढील दे रहे हैं, रन बनाने का मौका दे रहे हैं सामने वाली टीम को?
1: शक्ति, इस सीजन पता नहीं फील्डिंग को क्या हो गया, कई सारे कैचेस छूट रहे। अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन फील्डर भी आसान सा कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आईपीएल में। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से जीत हासिल किया है, पंजाब के लिए ये तकलीफ पहुंचा सकती है लॉन्ग रन में। जो टेबल अगर आप देखें तो पंजाब चौथे स्थान पर है, खिसक के नीचे आ सकते हैं, वो प्लेऑफ शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो खतरा है उनके सामने। अपने गेम को संभालना होगा और फिर जो बाकी 3 मैचेस बचे हैं वो जीतने होंगे पंजाब को। लेकिन कल एक मौका था उनके पास, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग किया है, जिस तरीके से रन अलाउ किए हैं, हालांकि ड्यू फैक्टर काफ़ी बड़ा रहा, लेकिन पंजाब को शायद ये मैच जीतना चाहिए था, उनके हाथ में था ये मैच। और शायद डेविड मिलर की पारी जो बहुत ही बेहतरीन निकली है इन द एंड, आई थिंक दे शुड हैव वन दिस गेम पंजाब।
0: जी बिल्कुल, डेविड मिलर ने इस बार कोई गलती ना करते हुए कह सकते हैं कि टीम को जिताया, और बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस भी नजर आया। और खासकर जो लोअर मिडल ऑर्डर था या फिर जो आखिरी के खिलाड़ी अकीब दर ने वहाँ पर 2 गेंदों पर 10 रन बनाए और एक बड़ी भूमिका निभाई टीम के लिए।
1: कप्तान अक्षर पटेल कैच छोड़ने के बाद उन्होंने जो अपना हाफ सेंचुरी बनाया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहा दिल्ली के लिए। लेकिन पंजाब सिर्फ अपने आप को कोस सकती है, ये मैच उनके हाथ था और उनके हाथ से अगर निकल गया तो नोबडी इज़ टू ब्लेम बट पंजाब दैट्स।
0: जी बिल्कुल, और अगर अभी वर्तमान मैच की बात की जाए जहां हैदराबाद और गुजरात आमने सामने हैं, दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं, एक दूसरे स्थान पर है तीसरे में, और जो भी आज जीतेगा वो टेबल टॉप करेगा। तो चूंकि हैदराबाद अब तक गुजरात की बात की जाए बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई जो अब तक देखने को मिली थी,
1: काफ़ी लो स्कोरिंग मैच लग रहा है अभी तक। हालांकि 11 ओवर ही हुए हैं, 11 ओवर जब तक हुए 80 का भी स्कोर नहीं बना है। आजकल तो आपको पावर प्ले में 60-70 रन आसानी से बन जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है जो अहमदाबाद में हो रहा है, और मुझे लगता है कि हैदराबाद ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला शायद सही किया है। गुजरात के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जैसा आपने कहा टॉप पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही है। ये प्लेऑफ में आप 1 या 2 फिनिश करेंगे तो आपको बेहतर अवसर मिलेंगे, मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू द फाइनल।
0: जी बिल्कुल, गुजरात के जहन में ये बात बिल्कुल होगी कि सामने एक ऐसी टीम है जिसके लिए इस आईपीएल का कोई भी टोटल जो है वो छोटा साबित हो सकता है।

0: ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज कम इनटू द टॉय इंडस्ट्री। छतारी, आपका बहुत स्वागत है मनी टॉक्स में।
1: थैंक यू सर।
0: आप बताइए कि आपकी कहानी क्या है।
1: मेरा नाम अमित चितारी है, मैं सावंतवाड़ी से आर्टिजन करके हूँ, और हम लोग एक मेरी ये फोर्थ जनरेशन है, अभी भी हम लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में।
0: ओके।
1: स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है, गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है, उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है।
0: ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए।
1: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है, लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी।
0: ओके। और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल फायदा हुआ है, उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन वगैरह खरीद लिए है, तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा।
0: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के, वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ हैं, क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल सर, आ गई है, क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं।
0: ओके।
1: बच्चे के लिए तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना वो बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है।
0: तो आप क्या आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
1: हाँ सर, होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं।
0: छतारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
1: Thank you, sir.
0: So, Vinod, coming back to you after listening to what Chitari said to us that he's been in this business for the past 4 decades, where China has dominated the global toy market. Now, how is India now competing, like people like Chitari competing with them, and what is our edge over Chinese manufacturers?
2: If you look at the overall toy ecosystem, I feel micro and small enterprises have largely responded very, very positively to the government's initiatives in the toy sector. And I think the policy push is one of the strongest examples of how targeted regulatory and industrial interventions can primarily revive domestic manufacturing ecosystem. So many toy manufacturers used to talk to us about the fact that there was intense pressure from low-cost imports, especially in those that were in the unorganized and mass market segments. A large number of small manufacturers shut down operations or shifted to trading imported products due to unsustainable competition. The government's interventions, especially the mandatory BIS quality standards and the high import duties, fundamentally changed the industry sentiment after the Vocal for Local campaign and the Honorable Prime Minister's reiterating over and over again that we need to look at, you know, how do we get back our own manufacturing and stop buying toys from all over the world. So if you ask me how MSMEs have reacted, a lot of them, like Chitari just talked about, have restarted or expanded domestic production capacities. They have increasingly adopted quality standards. They have modernized operations, improved product safety, and also invested in better manufacturing practices. So today, what you have is you don't have people that are just making products for the Indian market, but for a globally competitive ecosystem throughout the world. And Indian consumers obviously have this improved consumer trust in Make in India products. You've seen huge emergence due to the Startup India initiative, where you have had startups which are focused on STEM toys, educational kits, do-it-yourself learning products, AI-enabled learning tools, sustainable toys, culturally rooted Indian storytelling products. And that is where you are finding even the generational toy makers that are finding opportunities in combining manufacturing with education, creativity, digital learning. We just heard this from this artisan from Savantwadi. We've had toy clusters from Etikopaka, for example, or Kondapalli or Chennapatna, which have actually seen renewed attention throughout the world. And they've seen exports from India, which again, due to the emergence of e-commerce platforms, digital marketplaces, and people around the world coming to know about the fact that, you know, what we offer is something that no other country in the world offers. We offer completely organic toys, and they are highly educational. I remember, even in my own childhood, toys from Chennapatna that used to come, And how we used to

0: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था दिसंबर में, इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
1: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया। और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि

0: पूरा होगा।
1: जी चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
3: जो विपक्षी राज्य है उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा, वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा। अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है। और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
3: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है। और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही
1: जवाबदेही की आपने बात करी, तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है। और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
3: 2-3 बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है। और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता।

0: ये दोनों चीजें हैं उसमें, रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं, गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीस का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है
1: जी। क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है, अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे, राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा जमीन पर, ये दिखना शुरू होगा
1: जी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे, जल संरक्षण के काम, गाँव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओ हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटेनिंग बाल वगैरह अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहाँ पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा इसके लिए समर्पित होगा या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
0: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गाँव के आसपास जो जहाँ के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश की प्राथमिकता में शामिल है तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री भी शामिल है केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश का काम आएगा, तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है, शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं वो कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा, और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांवों का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं, गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल, अब अगर कोई गांव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है
1: जी,
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये बहुत आकर्षक बनाता है, तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गाँव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी
1: जी। क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल पे, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी की खासतौर पे जरूरत है ग्रामीण के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
0: बिल्कुल यही मंशा है, कन्वर्जेंस, जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे, 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पे मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में देश से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। कल जयपुर से मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से

0: एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवीके सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरा शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच मुंबई शेयर बाजार में आज लगभग 2% की गिरावट आई। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन, अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 169 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Earlier, as per sources, the Rajasthan Police SOG arrested 5 persons from Dehradun, including the alleged mastermind, Sikar-based career counsellor Rakesh Kumar, on the 7th of May. 4 NEET aspirants were also arrested the following day. Nashik police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed.

0: He said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam.
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है.
2: We have handed over this matter to the Central Bureau of Investigation for inquiry and all those involved in such wrongdoing will be sent to jail so that students' future are not adversely affected in any way. Along with this, we will conduct the examination again in a completely fair manner with no irregularities of any kind and no additional fee will be charged for the re-examination.
1: Fees नहीं चार्ज करेंगे.
0: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. The government has also secured the backing of the lone MLA of Amma Makkal Munnetra Kazhagam, S. Kamaraj, who was expelled from his party today. Chief Minister Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties since yesterday to consolidate support ahead of the floor test. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Karnapada, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit there will be talks on energy security. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began the Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seed Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Enovensia and Bagas Molana to enter the men's doubles second round. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी. मुख्य समाचार. भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा. इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया. कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ. इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया. नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल. और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
4: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती है।
4: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
3: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
0: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है और आज उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पहले सदस्य को खो दिया। आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टार्मर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का आग्रह किया। उधर श्री स्टार्मर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टार्मर से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है कि श्री स्टार्मर का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया है। खबरों के अनुसार विधेयक के पक्ष में 93 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। एक रिपोर्ट।
5: ये कानून इसराइल की सैन्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इसराइल के सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए और तब से हिरासत में रखे गए लगभग 300 कथित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस कानून के तहत न्यायाधिकरण को नरसंहार, इसराइल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने, युद्ध छेड़ने, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने और आतंकवाद सहित विभिन्न आरोपों में आरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को लगभग 5,000 से 6,000 फिलिस्तीनी आतंकवादी जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से इसराइल में प्रवेश कर गए और गाजा सीमा के पास कई स्थानों पर समन्वित हमले किए, जिनमें मुख्य रूप से हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के सदस्य शामिल थे। इन हमलों के परिणाम स्वरूप लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई और 251 बंधकों का अपहरण किया गया, जिनमें से कई को गाजा ले जाया गया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
3: इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हाकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देखते रहे हैं और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के अर्घाखांची जिले में आज एक यात्री बस दुर्घटना में 4 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार लगभग 30 यात्रियों को ले जा रही बस सुपा देवराली मंदिर की तीर्थयात्रा के बाद पर्वत जिले लौट रही थी, तभी पाणिनी ग्रामीण नगर पालिका 8 के दुर्गाफांत कुडेले में वे सड़क से उतरकर लगभग 100 मीटर नीचे गिर गई। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 और मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे के पुष्ट मामलों और खसरे से संबंधित लक्षणों में मरने वालों की कुल संख्या अब बढ़कर 424 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हुई मौतों में से 3 खसरे के पुष्ट मामले थे, जबकि 6 बच्चों की मौत खसरे जैसे लक्षणों के साथ हुई। हंता वायरस के प्रकोप से ग्रस्त जहाज से निकाले गए स्पेन के एक यात्री की इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हंता वायरस से संक्रमित पाए गए यात्री को मैड्रिड के एक अन्य सैन्य अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र इरवियन सहा और बगास मौलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया, कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. British Prime Minister Keir Starmer rejects resignation calls after local election setback, says required threshold of 20% MP not met. Israel's Knesset passes law creating military tribunal to prosecute October 7 attackers. In Nepal, 5 people killed and 20 injured after passenger bus crashed in Lumbini province. In badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to second round of Thailand Open in Bangkok. And now the news in detail. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Modi's visit to UAE,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने और हर श्रृंगार लेकर आज आपके साथ है अर्पना। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। तो चलिए आज के हर श्रृंगार को शुरू करते हैं मैंने प्यार किया फिल्म के गीत के साथ। वक्त मिला लें 10:31 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार।

जी हाँ, मौसम तो दोस्ती का आता है और उसके बाद जो बात है वो पहुंचती है धीरे धीरे मोहब्बत तक। अगर आप अपने किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं और अपने दिल की बात बयां करना चाहते हैं तो दोस्तों एफएम गोल्ड आपके पास और आपके साथ है ना हमेशा। गीतों के माध्यम से दिल की बात कहना यकीन मानिए बेहद आसान है। हम किसी से कम नहीं फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़।

बात चांद की हो, चांदनी की हो, रात के अंधेरे की हो, बात हो दोस्ती की या फिर मोहब्बत की, तो बात कहना बेहद आसान हो जाता है गीतों के माध्यम से, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी खामोशियां बहुत ज्यादा नखरेबाज हो जाती हैं। बड़ी नखरेबाज हैं खामोशियां तेरी, पास बैठा हूं पर वो टूटती ही नहीं। अंजाम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।

10:48 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर श्रृंगार और ये गीत है लम्हे फिल्म से लता जी और हरिहरन की आवाज में। आज आपके साथ हर श्रृंगार में है अर्पणा।

दिखने वाली बातें बस बातें नहीं रहती जब हो जाता है प्यार। इस दिल की हर बात जरूरत बन जाती है। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, जैसे तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगती हूँ हर जन्म में तेरा साथ, अब तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीरें मैं कहां से लाऊं। डर फिल्म से उदित नारायण की आवाज होगी इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर। आप सुनेंगे समाचार, 11:10 पर होगा गीत मेरे मनमीत, आपके संग रहूंगी मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत के बाद ठीक 11 बजे होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है।

0: पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डा पार्टी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister CV Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है 11:11 और 5 सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत की साहिर लुधियानवी के लिखे गीत के साथ। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज होगी, संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है हमराज। और इसके बाद आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। तो इन दो फिल्मों से गीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। अगला गीत होगा आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और इसके बाद जो गीत होगा वो आरडी बर्मन का संगीत है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। इन दो गीतों का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों

11:45 और 11 सेकंड हो चुके हैं। ये मधुर गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में। आर डी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत, फिल्म का नाम ये वादा रहा। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत है भूपेंद्र और आशा जी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का है, फिल्म का नाम है एतबार। चलिए सुनते हैं ये गीत, और आज आपके साथ है अर्पणा।

जी हाँ, इन गीतों के माध्यम से आप भी जहाँ खो गए हैं उसे कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:53 हो चुके हैं। अगला गीत होगा गुलजार साहब का लिखा हुआ, आवाज है लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम है मौसम। इस गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाजत। गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश

0: मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सेथो FC और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे,

शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे, कैसे ही सही लेकिन, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में हम तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। और अगला गीत आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है आनंद।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, शबनम की तरह ताजोतर इंतजार था। बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था। यूं भी नहीं कि शाम व शहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा उचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का पहला गीत फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल।

हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, मगर वो बाद में पहले से तर नहीं रहते। हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है?

चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हां, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया और कहा, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तलाश, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उसी पल कुछ नरम लगती है। तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, उसी के संग मेरी हर घड़ी चमकती है। तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उस पल कुछ नरम लगती है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है आवारा, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आप

की मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के

सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में, मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में, धूल बैठी तो लगा वह असर कम नहीं हुआ। वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए, वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए, पर दिल में उसका लिखा नाम कम नहीं हुआ। पर दिल में उसका लिखा नाम कम नहीं हुआ। वो चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दो रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, आवाज है श्रेया घोषाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सौंधी खुशबुओं में तर ये महकी फिजा, सौंधी खुशबुओं में तर ये महकी फिजा, तुम्हारी झुमकियों के रंग उतरती निशा। फूलों से नरमियां लिए ये जो जज्बात हैं, तुम्हारी ही तो सब ख्यालात हैं, तुम्हारे ही तो सब ख्यालात हैं। और वक्त आ चला है आप सभी से विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी।

और अंग्रेजी में समाचार 3:10 पर शमीम होंगे आपके साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आनंद, आवाज है मुकेश की। नमस्कार।

0: के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test, the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हमराही में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, रात के इस धीमे ठहरे हुए पहर में जब शहर की आवाजें थम कर सो जाती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब और ख्याल अब भी जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं वो सफर जहां बातें कम होती हैं और एहसास ज्यादा होते हैं। कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो पुराने खतों की तरह खुलती हैं जिनमें किसी की हंसी रखी होती है तो किसी की नाराजगी, तो कहीं कुछ अधूरी मुलाकातें। आज की इस महफिल में हम उन्हीं यादों के कोनों में चलेंगे जहां पुराने हिंदी गीत बसते हैं या यूं कहूं कि अब भी चुपचाप सांस लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जो शायद आपने भी कभी किसी की याद में गाया हो या सुना हो। तो आइए सुनते हैं उस खूबसूरत गीत को जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि दिन के मुकाबले रात ज्यादा सच्ची लगती है। दिन में हम किरदार निभाते हैं और रात में खुद से मिलते हैं। कुछ लोग इस वक्त लंबी सड़कों पर होंगे और कुछ किताब के खुले पन्नों पर सो गए होंगे और कुछ किसी पुराने नाम को याद करते हुए या दोहराते हुए बस चुप बैठे होंगे। दोस्तों, पुराने गीतों की खूबसूरती भी यही है, ये शोर नहीं करते हैं, बस धीरे से आपके दिल के पास आके बैठ जाते हैं। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं उसमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी है और वो खामोशी भी है जो अक्सर मैं ठीक हूं के पीछे छुपी होती है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, यादें भी अपनी आवाज बढ़ा देती हैं। कुछ चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त बीतने के साथ भी दिल की दीवारों पर वैसे ही टंगे होते हैं। बहुत अजीब बात है ना ये। कभी कभी एक पुराना गीत सालों बाद भी आपको वही एहसास लौटा देता है जिसे हम समझते थे कि हम भूल चुके हैं। अगला गीत शायद आपको वही एहसास दोबारा से लौटा दे। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान।

दोस्तों, अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो ये बात याद रखिए कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। कभी कभी यही वक्त हमें अपने सबसे करीब ले आता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस दिल और उसकी आवाज। वो शायद इसलिए क्योंकि उसमें जिंदगी भागती नहीं बल्कि ठहर जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हमारा दिल पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी उम्र भर साथ चलती हैं। हम सब के दिल में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहां एक नाम आज भी हल्के से धीरे से दस्तक देता है, और शायद इसीलिए पुराने गीत हमें इतने अपने लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ गाए नहीं गए हैं बल्कि वो गीत जिए गए हैं। अब कार्यक्रम का अगला गीत उन एहसासों के नाम जिन्हें कभी शब्द नहीं मिल सके लेकिन वो हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं आज भी हैं।

दोस्तों, रात का यह हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसी वक्त दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो बातें दिन की रोशनी में हम टाल देते हैं, वो रात की खामोशी में अक्सर चुपचाप आकर हमारे पास बैठ जाती हैं। लेकिन शायद यही तो संगीत का काम है, जो हमारे भीतर के शोर को धीरे धीरे सुकून में बदल देता है। और अब एक ऐसा गीत, एक ऐसा नगमा जो बरसों से तन्हा रातों का साथी बना हुआ है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, ये वक्त के वो टुकड़े हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। चलते चलते एक आखिरी नगमा, उन लोगों के नाम जो याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब जिंदगी में नहीं आते। ये रात सलामत रहे और यादें महफूज रहे और संगीत हमेशा आपके साथ रहे। इस कार्यक्रम से मुझे आपके दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। अलविदा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाड्डी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की इस शांत रात में हम साथ चलेंगे उन गीतों के जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वो नगमे जिनमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी और अधूरी बातें भी। तो बस खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको चांद दिख जाए तो बस हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा, और अगर किसी की याद आ जाए तो आज उस याद को आने दीजिएगा।

दोस्तों कभी कभी ना जिंदगी हमें बहुत आगे ले जाती है, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक कोई पुराना गाना हमारे कानों में सुनाई देता है, हम फिर वहीं लौट जाते हैं, उसी गली में, उसी मौसम में, अपने लोगों के बीच, जहां किसी ने पहली बार हमारा नाम लेकर पुकारा था। दोस्तों हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों में यही तो बात थी, ये सिर्फ धुनें नहीं थी बल्कि लोगों की अधूरी कहानियां थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाई।

तो रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल उतना सच बोलने लगता है। दिन में हम सब कुछ ठीक होने की अदाकारी करते हैं, लेकिन रात किसी अदाकारी को नहीं मानती। वो पूछती है, क्या सच में सब भूल गए हो?

कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी पसंद के गीत हमारे साथ रह जाते हैं। फिर चाहे दिन बदल जाएं, साल बदल जाएं या शहर बदल जाए, लेकिन जैसे ही वो दिन सुनाई देती है, हमारा दिल चुपके से कहता है, अरे ये गाना तो उसका था। और शायद इसीलिए हमारी फिल्मों के पुराने गीत आज भी हमें उतने अपने से लगते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ संगीत नहीं था, किसी का एहसास छुपा हुआ था।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है, अरुणिमा और शमीम हैं अभी आपके साथ। दोस्तों, अगर इस वक्त आप सफर में हैं, कोई लंबी सड़क आपके साथ चल रही है, या फिर कमरे की लाइट बंद करके आप चुपचाप बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं, तो ये गीत आपके लिए है। क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे रात की हवा या किसी की कमी, और उस कमी को महसूस करता हुआ ये खूबसूरत सा गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने,

दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद मिलना नहीं होता, बल्कि वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में यादें बन जाती हैं। एक साथ सुना हुआ कोई गीत, देखी हुई कोई फिल्म, बारिश में की गई लंबी बात, या देर रात सो गए। अच्छी बात यह है ना, ये अच्छे गीत कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते।

दोस्तों, रात अब और शांत हो गई है और घड़ी की सुइयां 4:48 बजा रही हैं। और ऐसे वक्त में दिल सबसे ज्यादा पुराना हो जाता है। उसे पुराने लोग याद आते हैं, पुरानी जगहें, पुरानी खुशबुएं और वो आवाज जिसे सुने हुए शायद बरसों बीत चुके हों।

दोस्तों, ये गीत संगीत हमेशा हमें अपनों की याद दिलाते रहेंगे। दिल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें एक कोना हमेशा पुराना रहता है। दोस्तों, कार्यक्रम अरुणिमा में आज यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो।

0: इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जाँच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम भोर सुहानी में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, ये रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है।

और इस शांत वक्त में अगर आप जाग रहे हैं तो शायद जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभी सन्नाटा भी बहुत खूबसूरत जवाब देता है, बस सुनने वाला दिल होना चाहिए।

दोस्तों, आज की सुबह उन सभी लोगों के नाम जो टूटे नहीं हैं, बस थोड़ा सा थक गए हैं। यकीन मानिए, हर मुश्किल रात के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है। और शायद आज की सुबह आपके लिए वही नई शुरुआत लेकर आई है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, आसमान में अब हल्की रोशनी उतर रही है, जैसे आसमान खुद कह रहा हो, कल जो नहीं हुआ वो आज हो सकता है। उम्मीद कभी शोर नहीं करती, वो बस चुपचाप दिल में उतर जाती है।

दोस्तों, जिंदगी हमेशा तेज भागने वालों को नहीं बल्कि कभी कभी रुककर मुस्कुराने वालों को भी मंजिल देती है। तो आज आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी खुशी को टालना बंद करेंगे और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे।